सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2025। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत

0: में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में गाई इस मातृवंदना से। रचना है मंजर भोपाली की और संगीत है रामकृष्ण चंदेश्री का।

अभी आपने समूह स्वर में मातृवंदना सुनी। रचना थी मंजर भोपाली की और संगीत था रामकृष्ण चंदेश्री का। और आइए इस मातृवंदना के बाद अब सुनते हैं ये मसीही गीत। स्वर है उषा उत्थव का और रचना है हलीम शाबिर की।

उषा उद्धव के स्वर में अभी आपने ये मसीही गीत सुना। रचना थी हलीम शाबिर की। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संत सूरदास जी की ये रचना, स्वर है जगजीत सिंह का।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने संत सूरदास जी की ये रचना सुनी। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम अर्चना के आखिर में आपको सुनवाते हैं शर्मा बंधुओं के स्वर में पंडित रामानंद शर्मा की ये रचना।

शर्मा बंधुओं के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 398वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर होगा अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह का। भूले बुस्तरे गीत, ये पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 पर। 6:55 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संस्कृत में समाचार। सुबह 7 से सुना जा सकता है दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह 7:05 का समय है कार्यक्रम कृषि संकेत का। आज का विषय है सब्जी फसलों के प्रयोग और सावधानियां, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं RD चौबे। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 पर। सुबह 7:20 से सुना जा सकता है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संयोजन व प्रस्तुति होगी दीपक निषाद की। गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता सुना जा सकता है सुबह 7:50 पर। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 से। कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत। प्रसारण समय होगा सुबह 8:15 का। बाल श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा बाल सभा सुबह 8:30 से। सुबह 9 से 10 तक सुने जा सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम अनुप्रसार

0: प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे से। 10:05 से 11 बजे तक आप सुन सकते हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। सुबह 11 बजे से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी आप सुन सकते हैं। शाम 5:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। संगीत सरिता, गैर फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा शाम 5:40 पर और शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार गीत। लोकरंग कार्यक्रम सुना जा सकता है शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर। शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं ग्राम सभा, अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम डगर विकास की। आज का विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन और ये आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत होगा रात्रि 8:30 से और मनचाहे गीत कार्यक्रम सुना जा सकता है रात 9 बजे से। रात्रि 9:30 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब सम्पन्न होता है।
1: मैं सागर हूँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 तक।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 398वां भाग आप सुन रहे हैं और मुख्य गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह का।

लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुन रहे थे। मुख्य गायक स्वर था अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह का। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। तो कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चा चा चा से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है मखदूम मुहिउद्दीन ने और संगीत है इकबाल कुरैशी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने चा चा चा फिल्म से ये गीत सुना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्यासा फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और श्रोताओं सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति प्यासा फिल्म का गीत। आवाज है, माफ कीजिए, पतिता फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, पतिता फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: संस्कृत में समाचारों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह।

कार्यक्रम का आज का अंक लेकर हम हाजिर हैं। सभी सुनने वाले स्वीकारें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, अगर हम किसी से सवाल करें कि जीवन में सफल हों इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके जवाब में सभी के अलग अलग उत्तर होंगे, पर जिस पर सभी लोग सहमत होंगे वो है लक्ष्य का निर्धारण। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम अपना लक्ष्य तय कर लेंगे, हम ये जान लेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, तो हम रास्ते भी आसानी से ढूंढ ही लेंगे। हम सभी के जीवन में लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे पतवार के बिना जहाज चलाना। ऐसा जहाज निश्चित रूप से दिशाहीन होकर भटकता रहता है। अगर हमारे पास एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होगा तो हम अपना मार्ग आसानी से तय कर पाएंगे। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाते हैं और भटकाव जैसी स्थिति से बच जाते हैं। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारी क्षमता का सही और पूरा विकास हो पाता है। श्रोताओं, हमारी पूरी संभावनाएं तब तक व्यर्थ ही रहती हैं जब तक कि ये पता नहीं होता है कि इन संभावनाओं का आखिर किया क्या जाए। लक्ष्य निश्चित होने पर हमारा समय और संसाधन दोनों ही व्यर्थ नहीं होते हैं। लक्ष्य हमें न केवल ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है, बल्कि निर्धारण करना हमें सफलता के लिए रास्ता तय करने का मार्ग भी बनाता है। लक्ष्य की ओर प्रगति करने से हमें खुशी और संतोष का एहसास होता है। हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने से भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मकता भी बढ़ती है। श्रोताओं कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 10 तरह के काम करने से हम एक अच्छा काम कभी नहीं कर सकते। श्रोताओं, इस जगह पर एक बात और कहना बहुत ज़रूरी है कि हम लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। कई बार हम अपने आसपास के सफल व्यक्तियों को देखते हैं तो हम उन्हीं की

तरह ही बनने की इच्छा करने लगती हैं। पर सच तो ये है श्रोताओं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी खूबी होती है। बस हमें ज़रूरत है उस खूबी को पहचानने की और ये समझने की कि आखिर हमारी स्वयं की क्या चाहत है, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो हमें स्वयं की रुचि और क्षमता देखकर ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है और उस तक पहुंचने के लिए हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहती हैं। श्रोताओं, अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक सार्थक सृजन के साथ अपने सपनों की दुनिया को सवार सकेंगे और ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि हम वो ना पा सकें जो हम पाना चाहते हैं। आज की सुबह सुबह में बस इतना ही। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह एफएम बैंड पर या आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है सब्जी फसलों के प्रयोग और सावधानियां, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री आरडी चौबे।
1: किसान भाई, एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं अक्सर, क्या हो रहा है कि कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं सब्जियों में और दूसरे या तीसरे दिन सब्जियां बाज़ार में पहुंचा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके साथ हम छल भी कर रहे हैं एक प्रकार से। तो हमेशा कोशिश ये करें कि एक साधारण रूप से जो किसान भाई अपना कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं सब्जी और मसाला फसलों में, उनको करना ही, एक तालिका बता रहे हैं हम आपको, उतने दिन बाद उन सब्जियों का आप तोड़ाई करके मार्केट में भेजें तो ये एक बहुत बड़ा समाज की ओर उपकार होगा। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे जन सामान्य बचे रहेंगे। तो सबसे पहला आता है मेलाथियन का बहुत उपयोग होता है हमारे यहाँ 50 cc का। तो भिंडी, तुरई और टमाटर में इसकी प्रतीक्षा अवधि है 3 दिवस की। 3 दिवस बाद आप मेलाथियन डाल के सब्जी बाजार में ला सकते हैं। इसी तरह से मिर्च में 2 दिवस की है और प्याज में 6 दिन की है। और इंडोसल्फान का उपयोग करते हैं यदि टमाटर में हम, तो 9 दिन के बाद टमाटर को तोड़ना चाहिए। फूलगोभी को 10 दिन बाद तोड़ना चाहिए। भिंडी, बैगन और तुरई को 7 दिन बाद तोड़ना चाहिए। और पत्ता गोभी को 15 दिन बाद। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इंडोसल्फान का प्रयोग कर रहे हैं फसल में, तो विशेष रूप से पत्ता गोभी में 15 दिन बाद ही फसल की तोड़ाई करें, अन्यथा सारा जो कीटनाशक है वो पूरा के पूरा किसी न किसी माध्यम से हमारे सब्जियों में, खाद्य पदार्थों में प्रयोग होगा और किसी न किसी को उस बीमारी से ग्रसित करेगा। इसी तरह से मिथाइल पैराथियन जो 2% चूर्ण का हम उपयोग करते हैं, उसमें पत्ता गोभी में ज़्यादातर उपयोग होता है इसका, इसकी अवधि है 10 दिन की। इस दवा को डालने के बाद 10 दिन के बाद आपको पत्ता गोभी की तुड़ाई करना है। मोनोक्रोटोफास 36 SL का रहता है। फूल गोभी में 10 दिन बाद आपको तुड़ाई करना है। भिंडी में 7 दिन बाद तुड़ाई करना है। फैन बेल रेट 20 EC, इसमें आपको भिंडी और पत्ता गोभी में ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें 9 दिन के बाद आपको छिड़काव के 9 दिन बाद तुड़ाई करना है। क्विनाल फास पत्ता गोभी में ज़्यादा प्रयोग होता है, 15 दिन बाद तुड़ाई करना है इसकी। और डाइमेथ्रेट 30 EC पत्ता गोभी में 15 दिन बाद, तुरई में 10 दिन बाद। साइपर मैथिन भिंडी में आप उपयोग करेंगे तो इसका 4 दिन बाद हम फसल तुड़ाई कर सकते हैं, और पत्ता गोभी में 6 दिन बाद। अल्फा मैथ्रिन 10 EC ये भिंडी और गोभी में प्रयोग होता है, इसको 2 दिन बाद हम मार्केट में तुड़ाई करके ले जा सकते हैं। लेमडा साइलोथ्रिन जो दवा आती है, इसको छिड़काव के कम से कम 3 दिन बाद हमें बाजार में बिक्रय हेतु किसान भाइयों को ले जाना चाहिए। तो ये मुश्किल से 10 या 15 दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग यदि आप कर रहे हैं, तो ये तालिका के अनुसार यदि आप सब्जी बाजार में बेचेंगे तो हम एक बहुत बड़ा उपकार अपने समाज और अपने देश के लिए करेंगे। क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जो पैदा हो रही हैं बहुत से कीटनाशकों के प्रयोग से ही पैदा हो रही हैं। कोशिश करें कि जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, विशेष रूप से नीम तेल 5 ml प्रति लीटर की मान से आप किसी भी फसल में डाल देंगे, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, ना हमारे कोई फसलों को नुकसान होता है, ना जन सामान्य को नुकसान होता है।
0: अभी आप सुन

0: रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत। आज हमारे साथ विशेषज्ञ थे श्री आरडी चौबे और विषय था सब्जी फसलों के प्रयोग और सावधानियां।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्ययोजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: आज नवाचार और तकनीक का जमाना है, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की और ऐसे समय में जब

0: ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकास खंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छेगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमररी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का

0: असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवां में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारासिवनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजातीय समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्ति शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण है सुमित दुबे का और संयोजन व प्रस्तुति है दीपक निषाद की।
2: गागर में सागर। गागर में सागर इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के संक में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इस पत्रिका के 5 सेगमेंट यानी कि 5 पड़ाव हैं जिनके तहत बहुत कुछ समेट कर लाते हैं हम आपके लिए। तो चलिए पत्रिका की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट सागर मंथन के साथ। सागर मंथन में बीते सप्ताह की कुछ खास गतिविधियां। इन दिनों स्थानीय खेल परिसर में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। गर्मी की छुट्टियों के चलते शहर के और आसपास के कई बच्चे और युवा बड़ी संख्या में खेलों से जुड़ी कई विधाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री प्रदीप अभित्रा जी।
3: हमारे सागर शहर में बल्कि पूरे जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में इसको हमारे माननीय मंत्री महोदय ने आरोह 2026 के नाम से दिया है और ये हमारे सागर में दिनांक 5 मई से इसको यहाँ प्रारंभ किया गया है। इसमें 8 वर्ष से 19 वर्ष आयु के जो हमारे बालक बालिका खिलाड़ी हैं उनको हम यहाँ पर 15 खेलों प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला मुख्यालय पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, इस तरह से इस परिसर में प्रातः 6 से 8, साय 5 से 7 और कुछ खेलों के समय अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं उनका हम आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं जी। वर्तमान में इन 15 खेलों में यहाँ मुख्यालय पर लगभग 900 खिलाड़ी पंजीकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार हमारे ब्लॉक मुख्यालय पर भी शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर 2 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि लोग आज इस मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के समय में जो हमारे युवा बच्चे हैं वो खेल के मैदान की ओर जुड़े। प्रयास ये है कि एक बड़ी संख्या में लोगों को खेल मैदान से जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद हम जानते हैं कि सभी लोग खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी नहीं बनते लेकिन मानसिक और फिजिकल रूप से वो स्वस्थ हों, और जो अपना खेल में करियर बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रयास होता है उनको हम एक दिशा दें ताकि वो अपना नियमित अभ्यास कर सके और इन खेलों में अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके और हमारे सागर शहर का नाम रोशन कर सके।
2: 12 मई दिन मंगलवार

0: को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की प्लेसमेंट सेल द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सूक्ष्म जीव विज्ञान के सहयोग से आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड की कैंपस भर्ती प्रक्रिया का सफल आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया में बड़ी तादाद में संबंधित विद्यार्थियों ने शिरकत की। इस पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर नवीन कांगू जी।
1: दिनांक 12 मई 2026 को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में भारत की नामचीन कंपनी से 3 विशेषज्ञ आए थे, जिन्होंने 20 छात्रों का इंटरव्यू लिया। रोजगार की संभावनाएं किसी पाठ्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसको देखते हुए डिपार्टमेंट में सभी छात्रों को उद्योग जगत के विभिन्न आयामों से परिचित कराने की कोशिश की जाती है, और खासकर ऐसे विषय जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित हैं उन पर उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि हमारे विभाग में उपलब्ध विश्वविद्यालय में उपलब्ध जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका विशेष महत्व है। हमारे छात्रों की अधिकाधिक एम्प्लॉयबिलिटी उद्योग जगत में हो सके, इस हेतु हम लोग उनके सिलेबस को भी इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। मसलन विशेष तौर पे एक पेपर हम लोग चलाते हैं जिसका भी शीर्षक ही है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल के विभिन्न जो आयाम है जिसमें कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग होता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बच्चों को उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार एक बहुत ही सफल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्लेसमेंट सेल के डॉक्टर अभिषेक बंसल का योगदान था। और अंत में जब इंटरव्यू के बाद हमने कंपनी के विशेषज्ञों से चर्चा की तो उन्होंने छात्रों के ट्रेनिंग और नॉलेज के स्तर की प्रशंसा की और इस प्रयास को कि हम उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस से परिचित करा रहे हैं को पढ़ा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने बहुत संतोष जाहिर किया।
0: 11 और 12 मई को स्वर्ण जयंती सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय आयोजन डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया। विषय था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। इस पूरे आयोजन में 76 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी प्रस्तुति पोस्टर एवं व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत की। अंत में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर कुमार जी ने हमें बताया।
2: भौतिकी विभाग द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन पर दिनांक 11 और 12 मई को स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित किया गया। टेक्नोलॉजिकल डे 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस उपलक्ष्य में हम सभी भारतीयों का साइंटिस्ट इंजीनियर्स का सम्मान में इस दिवस को मनाते हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारे विधाओं पर जैसे फंडामेंटल मटेरियल्स, इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ग्लासेस, सेरामिक्स, कंपोजिट, पॉलीमर मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई। हेल्थ केयर में डेवलपमेंट ऑफ एडवांस बायो मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए मटेरियल्स को सर्च करना, दैट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मटेरियल्स फॉर एरोस्पेस में, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे इम्प्रूव किया सकता है, उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट किया सकता है, इंडस्ट्रियल के टॉक्सिन वेस्ट को कैसे रेडिएशन शील्ड के रूप में यूज किया सकता है, सेंसर्स मटेरियल्स में केमिकल सेंसर्स हैं, बहुत सारे केमिकल गैसेस हैं, बायो सेंसर्स हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, थर्मल सेंसर्स हैं, इस सब सेंसर्स को डिवाइस के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और अभी नए रूप में जैसे कि AI है, IoT है, सस्टेनेबल इनोवेशन यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करके एनर्जी एफिशिएंसी कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कर सकते हैं, AI ड्राइव

0: वन हेल्थ केयर में कैसा इसका उपयोग हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई।
1: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जूनियर चिकित्सकों, विशेष रूप से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एवं मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बेसिक मेडिकल इमरजेंसी प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये शैक्षणिक पहल सेमिनार श्रृंखला के रूप में संचालित की जा रही है। इस प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तलहा साजी ने कहा,
2: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बेसिक इमरजेंसीज को लेकर के दो व्याख्यान लिए गए और इन दो व्याख्यान में पहला जो व्याख्यान था वो डॉक्टर देवाशीष विश्वास ने पॉइंटिंग और ओवरडोज के बारे में बिल्कुल बुनियादी तौर पे जो कार्रवाई की जा सकती है, रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग अर्थात जो सीएचसी और पीएचसी हैं वैसे अस्पतालों में जहां पर की वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहा करती है, वहां पर जो विभिन्न प्रकार के पॉइजनिंग और ओवरडोज के पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनको किस तरह से जांचना होता है, उनकी बुनियादी क्या क्या जो कि इलाज किया जा सकता है उसके बारे में काफी विस्तृत तौर पर जानकारी दी। साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंक जैन ने बेसिक ईसीजी उसको करना, उसको समझना और उसको समझ करके किस तरह से हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज छोटे अस्पतालों में दूर दराज के गांव में किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में बहुत ही शानदार किस्म का उन्होंने व्याख्यान दिया और उससे काफी जो है डॉक्टर्स को सीखने का मौका मिला। आज बंडला, रहरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़ के जो सीएचसी हैं और पीएचसी हैं वहां से काफी ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े और उन्होंने इसका काफी लाभ लिया। धन्यवाद।
1: शिखर की ओर, शिखर की ओर इस सेगमेंट के अंतर्गत आज की जानकारी आयुष विभाग के द्वारा 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में चलाए जा रहे हर घर योग अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सागर के जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर सिंह ठाकुर।
3: संभाग एवं जिले एवं पूरे मध्य प्रदेश में आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिदिन 100 दिवसीय योग आयुर्वेद से स्वस्थ रहने के लिए काम डाउन लगातार कर रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके नोडल हैं, उससे संबंधित जिले के और पूरे जिले में आयुष संस्थाएं हैं जो HWC केंद्र हैं, चिकित्सालय है, वहां सभी योगा प्रशिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं एवं प्रशिक्षक एवं सहायक हैं, वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को योगा के बारे में बता रहे हैं, उसे कैसे स्वस्थ रहना है, हम प्रतिदिन योग को कैसे करें और हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम आगे बढ़ें और हम कैसे अपने घर पे इसको जीवन शैली में अपने लाएं, इस प्रकार का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में आयुष डिस्पेंसरियों पे HWC केंद्र जो होते हैं वहां पर ये किया जा रहा है और धीरे धीरे इसको योग ग्राम भी बोला जाएगा जिससे कि वहां पे योग का प्रचलन हो सके। वहां पे एक योग ग्राम से संबंधित पंजी भी बनाई जाएगी जिसमें कि योग प्रशिक्षक और एक योग सखी वहां रहेंगे जो सबको योग के बारे में बताएंगे और उसका पंजी का संधारण भी होगा कि कितने योग हो रहे हैं पर डे, इस टाइप से ये चीजें स्वस्थ रहने के लिए चलाई जा रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इसमें स्कूल के छात्र छात्राएं, बुजुर्ग, सभी वर्ग के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं वो इस योग में भाग ले सकते हैं। हमारे जिला चिकित्सालय सागर में भी योग का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि पेशेंट होते हैं, कुछ अन्य आसपास के जो लोग होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो अभी आ रहे हैं और इस योग का लाभ उठा रहे हैं और हमारा तो उद्देश्य ये है कि योग से ही स्वस्थ हो जाए, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम, आपको रोग आएगा ही नहीं योग करेंगे तो फिर चिकित्सा का कोई वो है ही नहीं, उसमें चिकित्सा करनी पड़े हमें।
1: सागर के मोती,
4: सागर के मोती इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अमित दुबे जी से। अमित दुबे एक बहुत ही उम्दा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में छतरपुर में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें स्वर्ण पदक हासिल करके लौटे हैं। सागर के लिए ये बड़े गौरव की बात है। तो सबसे पहले अमित जी, हम आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं आकाशवाणी परिवार की तरफ से और आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि अभी जो हाल ही में छतरपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उसमें आपने स्वर्ण पदक हासिल किया, तो उस पूरी प्रतियोगिता

0: आया है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं सागर के लिए स्वर्ण पदक लेकर आया, क्योंकि ये मेरे जीवन में भी बहुत महत्व रखता है। चार वर्ष पूर्व जब मैंने शिक्षा विभाग में नियुक्ति हासिल की थी, यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया था मैंने, तब पहली बार मुझे जब पता चला कि शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं, तो मैं बहुत रोमांचित हो उठा था, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से खेल से एक विशेष लगाव रहा है। और चूंकि टेबल टेनिस मैंने देखा तो था, लेकिन कभी खेलने का मौका नहीं मिला, तो जब मुझे ये मौका मिला पहली बार, और चूंकि उस समय तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तब मैंने कहीं ना कहीं मन में एक संकल्प ले लिया था कि एक दिन मैं जरूर सागर की टीम में सिलेक्ट होऊंगा। और उस समय तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाऊंगा कि स्वर्ण पदक लेकर आ सकूं, लेकिन वहां पे मैंने ठान लिया था कि मैं सागर की टीम में जरूर चयनित होऊंगा। और तब से मैं प्रत्येक वर्ष निरंतर अभ्यास करता आ रहा हूँ टेबल टेनिस में। तो पिछली बार भी हम लोगों ने उपविजेता की कैटेगरी में आए थे, कुछ कारण से रह गए थे, उतना गेम अच्छा नहीं था, लेकिन और मेहनत की और प्रयास किए, समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता रहा वरिष्ठ खिलाड़ियों का, और टीचर जो हमारे रहे वो हमेशा सिखाते थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहे और उसी का कारण रहा कि हार्ड वर्क अल्टीमेटली पेज ऑफ एंड वी सिक्योर द फर्स्ट रैंक, स्वर्ण पदक हासिल हुआ।
1: वाह वाह, क्या बात है। अमित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे गेम्स हैं, तो उनमें टेबल टेनिस को चुनने का क्या कारण था?
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे खेल हैं, और मूलतः तो मैं क्रिकेट का प्रेमी रहा हूँ, बहुत क्रिकेट खेली है बचपन में, लेकिन जब मैंने टेबल टेनिस देखा तो उसमें सबसे विशेष बात तो ये लगी कि इसमें आप इंडिविजुअल कैटेगरी में भी खेल सकते हैं, इंडोर गेम है। अब चूंकि कई बार ऐसा होता था कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैदान की आवश्यकता है, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर मतलब नहीं खेल सकते, क्रिकेट वगैरह नहीं खेल सकते। और जो इंडोर गेम में है वो, उसमें अगर बात करें टेबल टेनिस की, तो आपको भी जानकारी होगी कि सबसे कम जो रिफ्लेक्शन टाइम लगता है वो सबसे कम रिफ्लेक्शन टाइम मिलता है आपको टेबल टेनिस में।
1: बिल्कुल,
0: तो इस कारण से ये और भी ज्यादा एक्साइटमेंट का विषय हो जाता है, तो इस कारण से मैंने टेबल टेनिस को चुना, क्योंकि मेरे लिए नया था। और जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं शिक्षा विभाग में आया तो एक मुझे चुनौती थी, क्योंकि मेरा चयन नहीं हो पाया था इस विधा में, मतलब इस गेम में, तो तब से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं इसी को ही चुनूंगा। और मैं एक और मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अफोर्डेबल गेम है ये, समय भी कम लगता है, और एक पूरा ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज होता है इसमें, जो मूवमेंट है इससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो कि बीइंग अ टीचर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बून है, और एक एजिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पेशेंस इंप्रूव होता है। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे इसके फायदे हैं, इस कारण से मैंने इस गेम को चुना।
1: अच्छा अमित जी, आपने बताया कि टेबल टेनिस तो आप खेलते हैं और भी गेम्स में आपकी रुचि है, और साथ में आप टीचर की हैसियत से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कौन सा विषय है आपका?
0: सर, मैं मूलतः उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ यहाँ पर, और अंग्रेजी विषय से अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ। शिक्षा विभाग में आने के पूर्व भी मैं कोचिंग संस्थानों में बच्चों को इंग्लिश सिखाया करता था, ग्रामर हो, चाहे वो स्पोकन हो या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये मेरा एज अ करियर मैंने ऑप्ट किया था इसको, और उसी में मैं समर्पित भाव से लगा हुआ हूँ।
1: जी, तो दोहरी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं शिक्षा विभाग में रहते हुए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जीवन में भी खेल भावना की बड़ी जरूरत रहती है, खिलाड़ी भावना जिसे कहते हैं, और खेलों में तो स्वाभाविक तौर पर होती ही है, तो वो खिलाड़ी भावना का जीवन में आप कितना महत्व समझते हैं और क्या महसूस करते हैं कि जीवन में उसका कितना फायदा मिलता है?
0: जी, बहुत सही कहा आपने, खेल भावना जो है वो सीधे सीधे जीवन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे कि खेल भावना में सबसे पहली बात तो ये सिखाई जाती है कि खेल में जीत भी होती है और हार भी होती है। जब तक आप खेल रहे हैं, जी जान लगाइए, पूरे समर्पण भाव से जीतने की कोशिश कीजिए, बट वंस द गेम इज डन, जब परिणाम आता है, तो चाहे जीत हो चाहे हार हो, दोनों को हमें स्वीकार करना होता है। ये स्पेशली जब हम लोगों के करियर की बात करते हैं तो उसमें भी ये मूलतः लागू होती है बात, कि जब तक हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तो पूरा अपना 100% देते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, कई बार परिणाम हमारे अनुकूल आता है, कई बार हमारी अपेक्षाओं से थोड़ा कम आ जाता है परिणाम, लेकिन उसको स्वीकार करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं सेम है जो इस गेम में है, खेल में, कोई भी खेल हो, उसमें खेल भावना हमें ये सिखाती है कि सकारात्मक जागरूकता रहनी चाहिए, ऊर्जा के साथ हमें प्रयास करते रहना चाहिए और जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं, तो जब मैं अपनी बात करूं अगर इस गेम की, तो उसमें मैंने एक चीज सीखी कि जो मुझ पे नहीं बन रहा है, मैं अपने ओपोनेंट वो मुझसे बेहतर खेल रहा है, तो उससे भी

0: हम सीखते हैं, और वही बात हमारे विषय में भी, अध्यापन में भी लागू होती है कि अगर हम में कुछ कमियां हैं, नोबडी इज परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो भले ही हमारा अपोनेंट क्यों ना हो, हम उससे सीखें। तो ये बात मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी एक विषय, जब मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं, MP बोर्ड की बात करें, तो अंग्रेजी एक थोड़ा सा टफ विषय होता है। लेकिन मेरे बच्चे इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उसमें मेरा भी 100% परिणाम रहा बोर्ड कक्षाओं में, जो 2025-26 का जो अभी मूल परीक्षा हुई थी, बोर्ड परीक्षा हुई थी, तो उसमें भी मेरा 100% रिजल्ट रहा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या फिर हमारा कार्य क्षेत्र हो, उसमें सकारात्मकता के साथ हम प्रयास करें। परिणाम बाद की बात है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ रहा है, जब तक हमारे हाथ में, तो हम अपना 100% दें।
1: अच्छा अमित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इससे पहले और भी कितनी प्रतियोगिताएं ऐसी रही जिनमें आपको खासा मुकाम मिला?
0: मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं शिक्षा विभाग में आया, जब मैंने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया, इसलिए ये मुझे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अधिक गौरव की बात है मेरे लिए। मैं स्वयं अपने आप के लिए इस बात के लिए बहुत धन्य मानता हूँ कि शिक्षा विभाग ने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि उसके पहले जो भूमिका रही एज अ टीचर, मैंने लोगों को तो ट्रेनिंग दी है, लोगों को बताया है, लेकिन हम लोगों को खुद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। और एक ऐसा समय जब ये मान बैठे थे कि अब तो शायद मौका नहीं मिल पाएगा किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का, लेकिन फिर यहाँ पे जब हम लोग शिक्षा विभाग में आए, तब ये प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। एज अ स्टूडेंट था तब, मैंने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है, चेस में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उस समय चूंकि टेबल टेनिस जनरली विद्यालयों में पाए नहीं जाते हैं, तो चूंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ, तो उस समय नहीं थे वहाँ पर जिस विद्यालय में था मैं, तो तब तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया बड़े लेवल पे, लेकिन अभी मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ पे।
1: हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा भी माना जाता है कि टेबल टेनिस जो गेम है वो एलीट वर्ग का गेम है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, कोई भी खेल हो, उसको हम जिस स्तर तक लेकर जाते हैं वो उस स्तर मान लिया जाता है उस खेल का। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी उपलब्धता उतनी नहीं रहती है, हमारे यहाँ पे ऐसे क्लब्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे टेबल्स अवेलेबल हों या कोचेस अवेलेबल हों, तो कह सकते हैं कि हाँ एक थोड़ा सा एक इलीट क्लास है जो मतलब इसको अफोर्ड कर सकता है। और हम लोग के साथ तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि शाम तक कई बार 6 भी बज जाते हैं विद्यालय से फ्री होते हुए, एंड बाय देन यू डू नॉट हैव दैट सनलाइट कि जहाँ पर आप आउटडोर गेम खेल सकें या कुछ हो, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए आप टेबल टेनिस आते हैं। तो हम लोग जनरली शाम के जो सेशन है 8-9 बजे तक बड़े आराम से इसको खेल सकते हैं, सीख सकते हैं।
1: तो अब स्वर्ण पदक तो आपने हासिल किया और अब आगे की यात्रा जारी रहेगी, तो आगे और कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं और कौन कौन सी प्रतियोगिताओं पर आपकी नजर है?
0: देखिए, आगे तो बहुत लंबा रास्ता है, जैसी प्रैक्टिस होती जाएगी तो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है जो सर्विसेज की टीम होती है मध्य प्रदेश की, उसमें सभी विभाग के कर्मचारियों को मौका दिया जाता है रिप्रेजेंट करने का, तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मैं राष्ट्रीय स्तर पर कर सकूं, तो सर्विसेज टीम में चयन हो जाए तो उसके लिए मैं अभी मेहनत कर रहा हूं।
1: और जो नए बच्चे टेबल टेनिस गेम से जुड़ने वाले हैं या जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। खुद पर विश्वास रखें, अभ्यास के साथ आगे बढ़ते चलें, और खेल में जीत और हार लगा रहता है, इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम एंड लाइफ ऑल्सो, तो वी शुड नॉट टेक इट दैट अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट रियलिटी, है ना, इसके आगे भी होता है, तो हम सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ये खेल में हम आगे बढ़े या ना बढ़े एक अलग बात है, लेकिन खेल भावना जो हम सीख जाते हैं वो निश्चित तौर पे हमें आगे लेके जाती है। और हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे सांदीपनी विद्यालय में भी अभी भी यहाँ पे गेम्स के लिए टेबल टेनिस का भी एक कोर्ट बन रहा है, तो उसमें भी टेबल्स प्रोवाइड की जा रहे हैं, और सागर क्रीडाधिकारी जो हैं उन्होंने भी हमारे जैसे परसोरिया स्कूल है और भी जो स्कूल्स हैं ऐसे आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पे भी टेबल्स अभी प्रोवाइड कराए हैं, तो ऑब्वियसली इन अपकमिंग फ्यूचर वी विल हैव मोर प्लेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स।
1: बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: राम राम भैया।
1: राम राम साहब।
0: वाह वाह वाह, गजबी कर दे भैया, का ढोलक बजा रहा है आप, वाह वाह वाह। तो का नाम है आपको
1: साहब? हम राकेश कुमार कटारिया, सैमराबाद, ग्राम कोटवार भी है साहब, संग है।
0: अच्छा अच्छा, तो काका बजाते हो? ढोलक तो बजाते ही हो आप, और काका बजा ले
1: साहब? ढोलक के साथ तबला भी, थोड़ो सो नगड़िया भी, और थोड़ी बहुत हारमोनियम भी।
0: ताल वाद्य आप ज्यादा बजात का है?
1: हाँ साहब, ऐसे ही।
0: तो कहाँ कैसे सीखो आपने? जो
1: बड़े भैया से हमें सीखो है, तो हमने आशाराम कटारिया जी, वही हमारे गुरु जी हैं। छोटे से लगन सी हती, सो भैया देखा देखा, फिर उन्हें थोड़ा बहुत बताओ, इतने सबके संग थोड़ी बहुत करी, सुबह चार जनों को इकट्ठो, वैसो है साहब।
0: मतलब भैया को देख के आपको लगो कि हमें बजाओ चाहिए?
1: हाँ साहब।
0: उनसे सीखे के बाद संगत में बैठत बैठा था आप?
1: जी साहब। जी साहब, जी जी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम करे अभी तक आपने, ऐसे कोई मंच पे आपने ढोलक के माध्यम से आप संगत करी हो?
1: बधाई नृत्य, नौरता नृत्य, बरेदी, तो ये सब में साहब ने ऐसे बहुत सी जगह प्रोग्राम दे भी गए साहब।
0: मतलब में बधाई डांस में आपने ढोलक वादन के माध्यम से अपने संगत करी?
1: जी साहब, जी जी।
0: कछु आपको पुरस्कार वगैरह मिले का?
1: हाँ साहब, पुरस्कार मिले हैं साहब।
0: कौन कौन से कछु बताओ, कौन कौन से कार्यक्रम रहे, कौन से पुरस्कार मिले?
1: जैसे कि साहब अपन स्कूल को प्रोग्राम ले लेते हैं, देवरी में हर साल शिक्षक दिवस पे बहुत बड़ा कार्यक्रम करते भी हो, तो उन्हीं के संग प्रोग्राम ले लेते, तो बहुत ऐसे सम्मान और ये सब चीजें, और फिर प्रोग्राम के भी अपन बाहर गएंगे तो कि सर्टिफिकेट वगैरह, सील वगैरह, ये सब साहब। ताल कटोरा में प्रोग्राम दो बार गए, सुधीर तिवारी जी के साथ में एक बार मंगल यादव जी के साथ, ऐसे प्रोग्राम करते रहे साहब।
0: तो मुख्य रूप से आप ढोलक और नगड़िया के माध्यम से संगत करते रहे उनके कार्यक्रमों में?
1: नगड़िया भी, थोड़ा बहुत ढपला भी बजा लेते, बधाई बधाई में थोड़ा सा लोटा वही ऐसे अपने बजाते रहते साहब प्रोग्राम में।
0: तो जैसे जब तबला या अपन ढोलक सीखते हैं तो उनमें कई तरह की ताले होते, जैसे दादरा है, कहरवा है, तो आप हर तरह की ताल बजा लेते हो?
1: हाँ साहब, हर तरह की ताल बजा लेते हैं।
0: अच्छा, सीखत में कबू ऐसा नहीं लोगों के हम जो संगीत महाविद्यालय है वो मैं अपन विधिवत एक शिक्षा लें तबला बजावे के, ढोलक बजावे की?
1: सब ऐसा नहीं हो पाओ, का गांव के आदमी अपन उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो बस अपने ऐसे ही चलते रहो,
0: देख सुन के सीखत रहे।
1: हाँ, देख सुन के साहब। ढोलक का हमने छतरपुर आकाशवाणी से भी ऑडिशन पास किया है।
0: तो कुछ बार रिकॉर्डिंग भी हुई आपकी?
1: हाँ, अभी एक रिकॉर्डिंग हुई, पहली रिकॉर्डिंग हुई थी, बुंदेली लोकगीत रिकॉर्ड हुए थे, तो मैंने उनके साथ संगत की थी। फिर सब रतन दादा जी ले गए थे उनके साथ में, फिर ढोलक साथ में बजाई उनकी।
0: अच्छा, आप कोटवार भी हैं आपने बताया, कोटवार के क्या क्या काम होते हैं वो बता दें आप।
1: कोटवार के जी अपने पटवारी जी के साथ रहना, और फिर सीमांकन वगैरह होता गाँव में जो भी हो रहा, तो वो भी देखना पड़ता है साहब।
0: तो इतना सब काम करते हैं आप, ढोलक के लिए भी प्रयास के लिए समय निकाल लेते?
1: हाँ साहब।
0: ढोलक वादन के माध्यम से कछु सुनाओ।
1: कदम कह रहा

0: ठीक है, बहुत धन्यवाद जी आपका।
1: इस सप्ताह चर्चा में, इस सेगमेंट में आज की बात केंद्रित है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके तहत 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से अध्यक्षता ग्रहण की और भारत इस वर्ष ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहा है। इसमें 11 सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं। इस साल का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: ब्रिक्स पार्टनर देशों की एक नई श्रेणी भी बनाई गई है। सामूहिक रूप से ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था 1/4 से अधिक और विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सतत विकास सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की आवास को मजबूत करना। गागर में सागर इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के संक में बस इतना ही। इस पत्रिका का संयोजन और प्रस्तुति थी दीपक निषाद की, और अब दीजिए अनुमति सुमित दुबे को नमस्कार।
1: गागर में सागर।
2: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था सुमित दुबे का, संयोजन व प्रस्तुति थी दीपक निषाद की। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन और श्रेया घोषाल की गाई हुई ये गज़ल। कलाम है निदा फाजली का।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है। News on AIR।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297।

0: पर। नंबर एक बार फिर सुने 97 70 43 22 97।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन

0: कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब

0: सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये कृष्ण भजन, स्वर है मालती विश्वकर्मा का।

मालती विश्वकर्मा की आवाज़ में अभी आपने ये कृष्ण भजन सुना, और आइए अब सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज़ में ये चेतावनी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों नमस्कार, सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे, समय सीमा 30 मई 2026 है।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ बुंदेली लोकगीत, कार्यक्रम है लोक संगीत। और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं डॉक्टर गजाधर सागर का गाया हुआ ये भजन।

डॉक्टर गजाधर सागर के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे बाल श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं, खासकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा जय हिंद। सूरज के संग आती धूप, आकर हमें जगाती धूप, धीरे धीरे तपन बढ़ाती, दोपहर खूब तपाती धूप। कभी बादल आकर छा जाएं, शर्मा कर छिप जाती धूप, सागर जल को मेघ बनाकर बारिश खूब कराती धूप, कहती कल फिर आऊंगी, शाम ढले घर जाती धूप, और फिर सूरज के संग वापस से आती है धूप, आकर हमें जगाती है धूप। देखो बच्चों, कैसे चमचम करके सूरज भगवान चमक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो उठिए, क्योंकि हम आ गए हैं एक बार फिर आप ही की तरह चहकती फुदकती उछलती कूदती रंग बिरंगी जानकारियों से सजी बच्चों की सभा बाल सभा लेकर। आज आप साथ हैं अपनी रानी दीदी के, स्वीकारें दीदी का ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। बाल सभा कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों चलिए, बाल धमाल में आज कौन सी अच्छी बात आप सीखेंगे सुनिएगा। कहते हैं ना बच्चों कि कोई बात यदि किस्से कहानियों द्वारा, किसी उदाहरण द्वारा, किसी की जीवनी द्वारा, किसी कथा द्वारा या किसी को देखकर देखी सुनी जाए तो वो जल्दी समझ में आती है। तो बच्चों आज जो बात आपसे हम करने जा रहे हैं उसे एक छोटी सी मगर बहुत गूढ़ पौराणिक कथा के द्वारा समझते हैं। बच्चों बात द्वापर युग की है, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था। उसमें एक बहुत ही बुद्धिमान पराक्रमी साहसी युवा योद्धा था अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी बातें अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। महाभारत युद्ध में जब वे अपने शत्रुओं के सामने पूरे जुनून से जोश से युद्ध कर रहे थे तो उनका पराक्रम देख शत्रु पक्ष घबरा गया। शत्रुओं ने सोचा कि अगर ये इसी तरह युद्ध करता रहा तो हमारी हार निश्चित है। तब सारे दुश्मनों ने, शत्रुओं ने रणनीति के तहत योजना बनाई बच्चों कि चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया जाए। बच्चों चक्रव्यूह एक ऐसी रचना होती है जिसमें किसी भी योद्धा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और युद्ध किया जाता है और जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। अब चूंकि अभिमन्यु युवा योद्धा था, बहुत साहसी था, पर उन्होंने अपनी शिक्षा के समय केवल चक्रव्यूह में जाना ही सीखा था। ऐसे समय जब वे दुश्मनों द्वारा बनाए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बुद्धिमान साहसी होते हुए भी शत्रुओं की चाल नहीं समझ पाते हैं और वे चारों ओर से दुश्मनों द्वारा बिछाए जाल में घिर जाते हैं। हाँ, वे लगातार युद्ध करते रहे पर फिर भी वे अकेले पड़ गए और चक्रव्यूह

वो तोड़ नहीं पाए और अंत में उनका वध हो गया, वो शत्रुओं द्वारा मार दिए गए। अब इसी बात को बच्चों यदि हम अपने वर्तमान परिवेश में समझें तो

समझ लेना होगी कि ये जो वर्चुअल दुनिया है, ऑनलाइन खेलों की दुनिया है, वो भ्रामक है, बनावटी है। इसको अपने मनोरंजन के लिए खेलना तो ठीक है, पर इसके जाल में फंसना, मतलब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसना है जहां बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आज हम सभी कई खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं कि इसकी लत लगना कितनी घातक है। इन खेलों को अकेले या समूह में खेला जाता है, इसमें हिंसा, दुर्व्यवहार और अधिकतर अपने विरोधियों को पराजित करने पर जोर दिया जाता है। ऐसी बात से बच्चों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, है ना बच्चों? ऐसे ही ऑनलाइन खेल को यदि ज्यादा समय तक खेला जाए तो ये खेल आप पर हावी होने लगते हैं। बच्चों का मन किसी काम में नहीं लगता, बस जब देखो ऐसा लगता है कि कब मौका मिले और इस खेल को खेलने लगे, जिससे आपका बहुत सा समय सिर्फ और सिर्फ खेलने में जाता है और जिसमें आप कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि आपकी सारी अच्छाइयाँ, सारी ऊर्जा इन खेलों में ही चली जाती है। तो इस तरह बच्चे पढ़ाई में दिनों दिन पिछड़ने लगते हैं। हाँ बच्चों, इन खेलों से और भी कई तरह के नुकसान होते हैं। कभी कभी इन खेलों के द्वारा आपकी या आपके परिवार की जानकारी भी ले ली जाती है, जो आपके परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। जानते हो बच्चों, ये खेल इतने आकर्षक, इतने लुभाने वाले होते हैं कि इनमें आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और फंस जाते हैं। इन खेलों को इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि हर खिलाड़ी इसमें जीतना ही चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस तरह बच्चे अनजाने में ही मुसीबत या संकट में गिर जाते हैं। यहां तक कि बच्चों कई बार जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो बच्चों, आज की बातों से आपको यही सीखना होगा कि ऑनलाइन गेम सीमित समय या मनोरंजन के लिए ही खेले जाएं, और कम खेलें तो अच्छा है और ना ही खेलें तो भी सही रहेगा, क्योंकि आपके घर में या बाहर जाकर जो दोस्त हैं उनके साथ खेलें। सच बच्चों, एक बार इस ऑनलाइन की दुनिया से बाहर आकर देखिए, हमारे आसपास की दुनिया बहुत बहुत सुंदर है, जो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशियां देने वाली हैं और आत्मविश्वास से भर सफलता देती हैं। तो चलिएगा, हमारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और हंसी खुशी के साथ खेल खेल में अपना समय बिताइएगा। और इस समय वक्त है एक गीत सुनने का, तो आइए सुन लेते हैं मधुर सा गीत।

0: हाँ बच्चों, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे होशियार भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और देखिए, बातों से ध्यान आ गया कि हमारे बाल कलाकार भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो चलिए मिल लेते हैं आपके अपने साथी से बाल मंच के तहत।
1: आ ए ए उ उ ओ लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
3: बाल साथियों, हमारे स्टूडियो में एक नन्हे मेहमान आप सभी से मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम अथर्व मालविया है।
3: अथर्व, अथर्व आपके नाम का मतलब क्या है?
4: मेरा नाम का मतलब श्री गणेश है।
3: अच्छा, आप ये बताइए अथर्व जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
4: सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: तो आपको किन किन विषयों में इंटरेस्ट है, कह सकते हैं रुचि है?
4: मुझे योगा करने में, ड्राइंग, पेंटिंग, बास्केटबॉल खेलने में मज़ा आता है।
3: अच्छा, तो फिर आपने बताया कि आपको योग में भी रुचि है, तो योग के बारे में कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताइए।
4: मेरा ये मानना है कि योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, योगा से फोकस बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। ये हमारी पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है।
3: हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और जब हमारा एकाग्र चित्ता या कॉन्सेंट्रेशन जो आपने बोला, ये अच्छा होता है, तो हमें बहुत ध्यान लगता है पढ़ाई में, है ना? हाँ। और बहुत जल्दी चीज़ें याद भी होती हैं। अथर बेटा, आप तो बहुत अच्छी बातें आज बता रहे हैं हमारे स्टूडियो में। अच्छा, ये बताइए कि आपको कौन कौन से आसन आते हैं?
4: मुझे सूर्य नमस्कार आता है, हलासन आता है, सिरासन आता है।
3: ये तो बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं और आपको अभी इतनी छोटी सी उम्र में सारे आसन आते हैं। और जैसे आपने योग को अपनी रुचि का विषय बनाया है, इसको आगे भी निरंतर जारी रखिएगा, है ना? पढ़ाई के साथ साथ योग को भी समय दीजिए, ताकि आप इसमें और अच्छे से महारत हासिल कर पाएं।
4: हाँ
3: बिल्कुल।
4: और मुझे एक चीज़ और बतानी है।
3: बताइए।
4: कि मेरी एक छोटी सी बहन है 2 साल की, और उसका नाम अविशा है। वो भी हमारे साथ योगा करती है।
3: अरे वाह, क्या बात है, 2 साल की बच्ची भी आपके साथ योगा करती है। आपने छोटे से इस गुण को विकसित किया है। तो अच्छा, ये बताइए कि आपको योग करने की जो एक कह सकते हैं कि मार्गदर्शन है, वो किससे मिला? कौन योग करता था आपके घर में, मम्मा या पापा?
4: मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर आया था और मैंने देखा कि मेरे परिवार के सारे सदस्य योगा कर रहे थे।
3: अच्छा,
4: तो मैंने उनको देखा और सीखा। जब मैंने योगा किया, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत, कंसंट्रेशन बढ़ा, चीज़ों में फोकस करने में आसानी हुई और मुझे बहुत हल्का भी लगता था।
3: अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते हैं कि जब नानी के यहाँ जाते हैं तो छुट्टियों में बड़ी मस्ती करने जाते हैं, घूमने फिरने खाने। आपने तो इतने अच्छे विषय को चुना और अपनी उसमें इंटरेस्ट को डेवलप किया। अच्छा अथर्व जी, ये बताइए कि आपको योग के अलावा और क्या अच्छा लगता है करना? घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, क्या पसंद है?
4: मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है।
3: पेंटिंग करना पसंद है, अच्छा। खाने में क्या पसंद है आपको?
4: मुझे छोले भटूरे पसंद है।
3: अच्छा, गीत संगीत का शौक है कि नहीं?
4: हाँ जरूर है।
3: अच्छा अथर्व जी, जैसे कि आपने बताया कि आप नानी के यहाँ आते हैं छुट्टियों में, तो अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, तो कुछ गर्मी के बारे में कहना चाहेंगे हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता हैं, उनसे कुछ सलाह देना चाहेंगे?
4: गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और फल भी खाने चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, आम है, खरबूज, तरबूज, है ना? तो जितने अच्छे पानी वाले फल हैं इनको खाएं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे धूप में बाहर मत खेलें, है ना? बच्चे जो होते हैं कि घर पर नहीं रहना है, बाहर खेलना है, ये नहीं करना है।
4: हाँ,
3: शाम को खेलना है और सुबह जल्दी उठ के खेलें। और आप तो योग करते हैं।
4: हाँ
3: है ना, किस वक्त करते हैं आप योग?
4: मैं सुबह 5 बजे उठ के करता हूँ योग।
3: अरे वाह, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है अथर्व जी। और आज आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं ने आपको सुना है, उनको भी बहुत पसंद आया होगा। आप ये बताइए, आपको कैसा लगा आज हमारे स्टूडियो में आके?
4: मुझे स्टूडियो में आके बहुत खुशी हुई।
3: खुशी हुई। चलिए, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
0: बाल मंच अभी आप सुन रहे थे और आपके साथी से बात कर रही थी सुब्रता दीदी। और आपके मन में भी इच्छा होती है बात करने की, अपनी बातें साझा करने की अपने साथियों से, तो आप भी आ सकते हैं सागर आकाशवाणी के स्टूडियो बुधवार शाम 4 बजे से। और चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर।
1: तो बच्चों, ये है
0: बच्चों रेडियो की पाठशाला में आज एक बहुत ही प्यारी सी कविता हम आपको सुनाते हैं, जिसमें आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। बच्चों, एक बार की बात है जो हम तुम्हें सुनाते हैं। गर्मी के मौसम में सभी फल अपनी सभा लगाते हैं। आम कहता है मैं बेहतर, लीची कहती मैं बेहतर, तभी केला चाचा आके कहते पोटेशियम आयरन का मैं भंडार, मुझसे बेहतर कौन है यार। इस तरह सभी फलों में बड़ा हूं की छिड़ गई जंग। फ्रिज के अंदर बैठे सब फल लड़ रहे थे मन ही मन। तभी पहुंचे डॉक्टर अंकल, खोला फ्रिज, निकाले सारे फल, बोले बच्चों पौष्टिक ना होता कोई एक फल, सब फलों की होती अपनी अपनी ताकत। सो रोज खाएं भांति भांति के फल। जब ये बात सुनी फलों ने, खुश हुए सब मन ही मन, बोले अकेले अकेले होने में नहीं कोई दम, मिल जाएं तो कर दें सबको फिट दुरुस्त और तंदुरुस्त हम। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस कविता से बच्चों दो सीख हम ले सकते हैं। एक तो ये कि यदि हम समूह में या मिलके कोई भी काम करते हैं तो वो काम करना आसान हो जाता है और जीत उसमें निश्चित तौर पर मिलती है। और दूसरी ये कि हमें सभी तरह के फल और सब्जियां खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एक कोई फल खा रहे हैं या एक ही एक तरह की सब्जी खा रहे हैं। जो भी घर में आपकी माँ खाना पकाती हैं, भांति भांति की सब्जियां बनाती हैं, फल आपको देती हैं, और गर्मी के मौसम में तो बहुत तरह तरह के फल आते हैं, मैंगो शेक भी बनाती है माँ, पना भी देती है, दही भी देती है, छाछ भी देती है, मठा भी मिलता है, तो हमें सभी फलों को खाना चाहिए क्योंकि सारे फलों से बहुत पौष्टिकता मिलती है और ऊर्जा मिलती है। तो आज की रेडियो की पाठशाला यहीं तक, और आपके लिए आज बाबा जी आ गए हैं कहानी सुनाने के लिए। तो चलिए सुनते हैं बाबा का पिटारा।

एक और प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है मितव्ययिता। बच्चों, आज के ही दौर की कहानी है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत पुरानी बात है। बच्चों, ये आज के दौर की ही बात है। एक गांव में चिंटू और मुनिया दो भाई बहन रहते थे। खूब होशियार थे, मन लगाकर पढ़ते थे, खूब खेलते थे और अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते थे। कभी किसी का अनादर नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते। मुनिया चिंटू से थोड़ी सी बड़ी थी, समझदार भी ज्यादा थी। भैया, दोनों भाई बहनों में आपस में भी खूब प्यार था। लेकिन चिंटू की एक बुरी आदत थी बच्चों, वो आदत आपको भी दूर करना है अगर हो तो। चिंटू की आदत बुरी ये थी कि उसको जहां से भी जो भी पैसे मिलते तो वो चट से कुछ ना कुछ खाने की चीजें आके चटर पटर करके खा जाता और पूरे पैसे खत्म। लेकिन मुनिया बड़ी समझदार थी। उसने एक गुल्लक खरीदी थी और वो जो भी पैसे मिलते मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ दादा दादी जिनसे भी जो भी पैसे मिलते वो थोड़ी थोड़ी सी बचत करके अपने गुल्लक में डालती जाती। बच्चों, कुछ पैसा खर्च करती और कुछ पैसा रख लेती थी। ये उसकी मितव्ययिता थी बच्चों। ऐसे में चिंटू ने कहा, मुनिया मम्मी का जन्मदिन आ रहा है, मैं उन्हें क्या दूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मुनिया ने कहा, मेरे पास तो खूब पैसे हैं, लेकिन जन्मदिन में अभी भी थोड़ा वक्त है चिंटू, तुम ये लापरवाही छोड़ो, पैसे उड़ाना बंद करो, थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचाओ, हम लोग मिलके मम्मी को कोई एक अच्छा सा तोहफा देंगे। अब भैया चिंटू तो परेशान हो गया, पैसे तो उसके पास थे नहीं। अब उसने अपने आप को सोचा कि चिंटू भैया, तुम तो बहुत खर्च कर देते हो, जो भी पैसा मिलता है चट कर जाते हो, क्यों ना आज से ही बचत कर ली जाए। चिंटू को दादी ने कहा, चिंटू बेटा ये कुछ पैसे रखो, कुछ खा लेना। चिंटू को वो पैसे मिले तो उसने कहा, जी दादी खा लूंगा। लेकिन उसने वो पैसे बचाना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसको जहां से भी जो भी पैसे मिलते वो उन्हें थोड़े थोड़े करके जोड़ता जाता। मुनिया तो यही सोच रही थी कि चिंटू तो खा जाता है, चिंटू क्या बचाएगा पैसा। लेकिन जब मम्मी का जन्मदिन आया तो चिंटू एक बहुत ही बढ़िया सी भेंट अपनी मम्मी के लिए लाया। चिंटू की भेंट देख के मुनिया भी चौंक गई, बोली, चिंटू भैया तुमने ये भेंट कहाँ से ली। मम्मी और पापा उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे। मम्मी और पापा को सब पता चल गया था कि चिंटू अब अच्छा बच्चा बन चुका है, वो पैसों की कीमत पहचान गया है और मितव्ययिता पर ध्यान भी देने लगा है। तो चिंटू ने कहा, मुनिया मैंने भी अब पैसों की बचत करना सीख लिया है, मितव्ययिता कैसे की जाती है ये भी मैंने जान लिया है, अब मैं पैसों को कभी भी यूं ही बर्बाद नहीं करूंगा, ये लो मम्मी तुम्हारी भेंट। और मम्मी पापा के साथ मिलकर मम्मी का जन्मदिन मनाया और खूब खुश हुए। बच्चों, हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पैसों का मूल पहचानना चाहिए, उन्हें यूं ही नहीं बर्बाद करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा कल की बहुत बड़ी बचत बन सकता है। तो बच्चों, बाबा फिर आएंगे एक और कहानी लेके। तब तक बाबा ये चला।

हाँ तो बच्चों, कहानी आपको निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी, क्योंकि बाबा जी की कहानियाँ होती ही ऐसी हैं कि जो हमें अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी अच्छी सीख दे जाती हैं, अच्छी शिक्षा दे जाती हैं। तो इन कहानियों को जो आप सुनते हैं और जो सीख आप

0: ग्रहण करते हैं बच्चों, उन्हें अपने जीवन में अमल में लाइएगा, उनकी बातें मानिएगा और आगे बढ़िएगा, तो फिर देखिएगा कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। और हम भी आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्रम की तरफ।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
2: जाकी हिंदुस्तान की।
0: बच्चों आज झांकी हिंदुस्तान की के अंतर्गत जानेंगे वंदे मातरम की कहानी। जी हाँ बच्चों, वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बच्चों जैसे जन गण मन हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान है, उसी तरह वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत है। अब इसके बारे में बच्चों जानते हैं तो ये गीत 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जिसे बंगाल के बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। इस गीत को लिखे 150 साल हो गए हैं। 24 जनवरी सन 1950 को वंदे मातरम गीत की को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी गई थी। उसी समय भारतीय संविधान सभा में यह तय हुआ कि जन गण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। आगे बात करें बच्चों तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये देशभक्ति का प्रतीक था, इसलिए इस गीत को राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला। आपको बता दें बच्चों कि वंदे मातरम गीत के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े होने का नियम है। इस गीत को गाने में करीब 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। सन 1896 में हुए एक अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। तो बच्चों झांकी हिंदुस्तान में आज वंदे मातरम गीत की यात्रा जानी, आपको निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। और आज झांकी हिंदुस्तान बस यहीं तक, और देखिए आपसे बातें करते करते समय अब आ गया है आपसे अनुमति लेने का। तो बच्चों यही कहेंगे चलते चलते कि गर्मी का मौसम चल रहा है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि दीदी तो बस अपनी बात किए बिना मानती नहीं है। हाँ बच्चों सच ही तो है, मैं भला कैसे मान सकती हूँ कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं या इस मौसम का आनंद ना ले पाएं। तो ये बातें करना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी चल रही है तो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, घर से तो बाहर निकलिए मत जब सूर्य देवता बहुत चमचम करते हैं, लेकिन यदि बाहर निकलना पड़े तो पूरी तरह से कवर होके निकलिएगा, कैप लगाइएगा और छाता भी लगा सकते हैं, आंखों को भी कवर करके निकलिएगा, मतलब आप गॉगल्स या चश्मा लगा सकते हैं, कानों को भी ढक के जाइएगा। और हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आपकी माँ और पापा जो बातें कहते हैं उन्हें मानिएगा ज़रूर। एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है, एकदम से बाहर नहीं जाना है, और हाँ मोबाइल ज़रा कम चलाना है, ना चलाएं तो भी बहुत बेहतर है। और सुबह शाम जो ठंडक होती है मौसम में, उसमें ज़रूर से खेलने जाया कीजिएगा, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मन से भी बहुत खुश रहेंगे। तो बस हम यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बहुत सारी मस्ती करते रहिएगा और कार्यक्रम बाल सभा जरूर सुनते रहिएगा। और दीदी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम बाल सभा से, और सारे बच्चे बोलेंगे जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारे बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बाल सभा। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल, महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल की आवाजें, म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज, बोल हैं गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार्खा फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन

0: चाहिए मुझे।
1: गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहर।

0: नजर हो।
1: अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उदास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दर्द

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
2: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख है मयंक भार्गव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: बैतूल जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत 2802 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से सोमवार की शाम तक 2400 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सिंक किया जा चुका है। जिले के सभी 21 चार्जों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साह के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा मकान सूचीकरण और ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर ही पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट लेआउट मैप तैयार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में बैतूल जिले में इस बार कुल 456,050 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरीफ की फसलों का रकबा तय किया गया है, जिसके विपरीत पिछले साल 455,510 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। इस साल कुछ फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि कुछ फसलों के रकबे में कमी आई है। बैतूल जिले के किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक डॉक्टर आनंद बडोनिया ने बताया कि इस बार धान को 44,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। पिछले साल ये 43,872 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं मक्का 301,500 हेक्टेयर में बोई जाएगी, जो कि पिछले साल 393,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं कोदो कुटकी का रकबा इस बार 1,000 हेक्टेयर रहेगा। बीते साल इसका रकबा 639 हेक्टेयर था। उड़द, मूंग और अरहर का रकबा भी इस साल बढ़ेगा। बीते साल इन दलहनी फसलों का रकबा 6,971 हेक्टेयर था, जबकि इस बार 7,750 हेक्टेयर में ये फसलें बोई जाएंगी। वहीं तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इस साल बैतूल जिले के 1,718 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। न्यूजीलैंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदा पहुंचकर नांदा हानि कलेक्शन एवं प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने शहद उत्पादन से जुड़े स्थानीय समूहों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में हनी कलेक्शन सेंटर स्थापित होने के बाद शहद के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले शहद का मूल्य लगभग 55 रुपए प्रति किलो था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बैतूल जिले में इस साल गेहूं खरीदी की रफ्तार पूरी तेजी पकड़ चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी के टेकाम ने जानकारी दी है कि अभी तक जिले में 40,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। अभी भी हजारों किसान अपने गेहूं की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल की खरीदी का आंकड़ा देखकर जिले को इस साल गेहूं खरीदी के लिए कम लक्ष्य दिया गया था। वहीं इधर बंपर उत्पादन को देखते हुए जिले से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 मीट्रिक टन किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्षीरधारा ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 37 गांवों का चयन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि पेयजल समस्या से प्रभावित गांवों में बोरिंग मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार इस मौके पर व्यक्त किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो, फोन करें गीत सुने सर।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपना नाम बताएं आप।
1: हाँ, श्रीवासी लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर।
0: बहुत ही खुशी होती है जब आप सभी श्रोताओं के फोन आते हैं हमारे पास
1: सर।
0: तो श्रीवात्री जी, हमें ये बताएं कि सागर में हम ट्रैफिक को कैसे सुधार सकते हैं।
1: सर, अपन को मार्गदर्शन देना चाहिए और पहले अपन को खुद पालन करना चाहिए नियम का।
0: हाँ,
1: और जो भी अपन को मिले उससे निवेदन करना चाहिए, भैया ऐसे मत चलो या साइड से चलो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: चलते तो यही परेशानी होती है।
0: हाँ,
1: से आदमी निकाल देता गाड़ी तो एक्सीडेंट का चक्कर रहता।
0: सही कह रहे हैं आप,
1: और बच्चे तो मानते ही नहीं है, कोई सुन लेगा तो मार्गदर्शन दे देते।
0: सही, कई बार ये भी हो जाता है कि पालतू पशुओं को भी सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, उनको भी ऐसा ना करें।
1: हाँ, उनको भी हम बोलते हैं सर, गांव देहात में रिश्तेदारी जो है।
0: हाँ,
1: तो जो जाते हैं तो उनसे निवेदन करते कि सर ऐसा करो कि अपने गाय बछड़े बांध के रखो
0: जी,
1: ताकि समस्या ना हो, लोगों को तकलीफ ना पड़े।
0: बिल्कुल सही कह रहे श्रीवत्री जी। बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको।
1: आप जैसे कैसा बोल रहे हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: आपसे मिलने की इच्छा, मिल ही नहीं पाते।
0: हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी।
1: हाँ,
0: बता दें गाना कौन सा सुनवाए।
1: उपासना
0: जी।
1: दर्पण को देखा तूने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो,
2: स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में
1: कल्याण सिंह ठाकुर बोल रहे हैं सर।
2: कल्याण भाई कहाँ से बोल रहे हैं?
1: वेचनवारा से।

0: करते हैं आप कल्याण जी?
1: किसानी करते हैं सर।
0: इस वक्त क्या चल रहा है आपके खेतों में?
1: अबे खरार फिर रही है सर।
0: अच्छा अच्छा, कल्याण भाई हमें ये बताएं कि जब गांव के सामने से सड़कें निकली रहती हैं तो लोग थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है?
1: जी सर, सावधानी से चलें, मध्य चलें।
0: और जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश रहती है कि अगर आपको दिख रहा है कि गांव पास में आ रहा है तो कोशिश करें आपकी और ज्यादा स्लो हो जाएं।
1: जी सर।
0: और बताएं क्या हाल चाल है आपके?
1: सब ठीक है सर।
0: बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: रंग फिल्म का सुनवा देना सर, तुम्हें देख है मेरी आँखें।
0: आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर रंग फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो।
4: हाँ सर, आकाशवाणी सागर सर।
3: जी बिल्कुल सही जगह आपने फोन लगाया है। कार्यक्रम का नाम है फोन करेंगी सुने।
4: जी सर।
3: जी अपना नाम बताएं।
4: मैं अंबिका प्रसाद उपाध्याय रतौना से बोल रहा हूँ।
3: जी अंबिका जी, क्या हालचाल हैं आपके?
4: अरे गर्मी पड़ रही है सर, मैं तो अब घर पे ही बैठा हूँ।
3: बहुत ही अच्छा उपाय है ये कि अगर जरूरी नहीं है तो हम घर पे बैठे तो ये ज्यादा अच्छा है।
4: जी सर, अब यहाँ से कोई मजबूरी होता है तो जब निकलते हैं।
3: अच्छा, आपके गांव के पास से ही भोपाल रोड निकली हुई है
4: जी,
3: और अब 4 लेन भी बन रही है, तो गांव वालों की क्या क्या जिम्मेदारी है दुर्घटनाओं से बचने के लिए?
4: एक तो जहां भी क्रॉसिंग है वहां देख के दोनों तरफ देख के निकले, और क्या होता है कि स्पीड में वाहन बहुत तेज चलते हैं।
3: हाँ,
4: चारों तरफ देख के ही क्रॉस करना चाहिए। वैसे
3: एक निवेदन रहेगा कि अगर पालतू पशु है, गाय है, भैंसे हैं, कोशिश करें कि सड़क पर ना छोड़ें।
4: नहीं सड़क पर तो नहीं छोड़ते, मतलब क्या है गौशाला है उसमें छोड़ देते हैं हम लोग अंदर।
3: तो अंबिका जी आप तो प्रयास करें कि रतौना के जितने भी लोग हैं उनको जो यातायात के नियम हैं उनके बारे में जरूर बताएं आप लोग।
4: नहीं बताते हैं सर।
3: जी बताएं अंबिका जी, गाना कौन सा सुनना है आपको?
4: अब जो पुरानी फिल्म है आशा, शीशा हो दिल हो आंखें टूट जाता है।
3: ठीक है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म आशा का ये गीत।

0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार, फोन करे ये सुनने में स्वागत है आपका।
0: जी सर, गंधर्व राजपूत ग्राम नोएडा से बोल रहा था।
1: क्या करते हैं गंधर्व भाई आप?

0: दुकान कर रहे हैं सर, स्टैंड पे, बस स्टैंड पे।
1: अच्छा
0: जी सर।
1: अच्छा गंधर्व भाई, हमें ये बताएं कि सड़कों पे दुर्घटनाएं कम हो, इसके लिए सर क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग?
0: इसको सर गाड़ी मत भी चलना चाहिए सर जी।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, हम तो रोड पे देखते हैं तेज गाड़ी चलाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: गिर भी पड़ते हैं, हम तो यही कहते हैं मत भी गाड़ी चलाएं सर,
1: धीमी गाड़ी चलाएं। साथ ही प्रयास करें कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल ना उठाएं।
0: जी सर,
1: मोबाइल पर बात ना करें।
0: जी सर।
1: और हमारी जिम्मेदारी, जो पैदल लोग चलते हैं गांव में, रोड क्रॉस करते हैं, वो कहीं से भी रोड क्रॉस कर देते हैं, बीच में से अचानक से मोटरसाइकिल ले आते हैं, ट्रैक्टर ले आते हैं, तो इन चीजों से भी बचना चाहिए।
0: जी सर, बचना चाहिए।
1: कि सामने वाला तो अपनी एक स्पीड में आ रहा है, जो निश्चित स्पीड है अगर उसमें भी आ रहा है, और अचानक से कोई सामने से रोड क्रॉस कर दे तो फिर वो क्या करेगा?
0: नहीं सर, सही बात है।
1: तो जिम्मेदारी सभी की बनती है।
0: जी सर,
1: अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं।
0: जी सर, जी दुकान पे लोग बैठते हैं ना,
1: तो
0: आपका ये रेडियो पे सब बताते हैं तो वो सुनते हैं, कछु लोग तो समझ गए कि ये रेडियो जरूरी है सुनना।
1: जी बिल्कुल,
0: हमने कहिए कि क्या फ्रेम भी लगा लो अपने घर पे।
1: सही है, तो आपकी बिक्री भी बढ़ती होगी।
0: जी सर, बढ़ती है, लोक गीता भी सब लोग भी सुन के गए हैं आज को।
1: अब हमें बताएं कि गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना सुनवा दे सर, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ झूठ बोले कौवा काटी,
1: बॉबी फिल्म का।
0: जी सर,
1: चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी का। ये
0: जी सर, नमस्कार।
1: झूठ

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में। नाम बताएं अपना।
1: हमारा नाम गणेश कुर्मी साजी, हम ग्राम साजी से बोल रहे सर, जिला सागर।
0: साजी कहाँ पर है आपका गांव?
1: जा है 25 किलोमीटर सागर से।
0: तो गणेश भाई, यातायात के अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जब भी सड़क पे चलें तो कोशिश करें कि अपने नियम से चलें।
1: जी सर, दो ही बगल देख के निकले सर।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने, दो ही बगल
1: देख के रोड किराचन कर रहे सर।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: दो ही बगल निकले वो सर, हाथ मार के निकले।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, थोड़ा सा हाथ दे दें। और
1: अगर निकल रहे मोटरसाइकिल के ठेला के बस आ रही हो सर, हाथ मारे उसको, समझ जाएंगे जो निकलना है अपन साइड मंगा रहा है।
0: अच्छा गणेश भाई, मोबाइल कानों में लगा के भी नहीं निकलना चाहिए रोड पर।
1: जी सर।
0: कोई दुर्घटनावश व्यक्ति घायल हो जाता है तो सबसे पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
1: जी।
0: और गणेश भाई, अब हमें बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: फूल कांटे का, कौन भी सुनवा दो।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फूल और कांटे इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका फोन करेंगे गीत सुने में।
0: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: हम बोल रहे हैं भागचंद साहू जी, गोकुल ग्राम परसवन से।
1: भागचंद, कुछ अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं?
0: सर जी हम देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और अब अभी हम गांव पे आए हैं, हमारे गांव है गोकुल ग्राम परसवन।
1: अच्छा अच्छा, परसवन।
0: हाँ, रहते हैं हम गंजवासोदा में।
1: हाँ हाँ। अच्छा भागचंद, हमें यातायात के नियमों का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं थोड़ा सा बताएं, और कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं आप?
0: सर जी देखो सुरक्षा तो मेन चीज होती है। क्या है देखो, अगर गाड़ी पे चल रहे हैं तो हेलमेट जरूरी है।
1: हाँ।
0: ब्रेक जरूरी है।
1: हाँ।
0: और देख रेख जरूरी है, कहाँ कहाँ जाना है मुड़ के देखो।
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं। किस साइड से जाना है, सही साइड से जाना चाहिए, गलत साइड से जाओगे तो फिर वो समस्या हो सकती
1: है। और कोई भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं,
0: ये तो बिल्कुल मेन चीज है। नशा करके तो वाहन चलाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
1: सड़क पर चलते हैं ध्यान ही नहीं देते कि पीछे से गाड़ी आ रही है, हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं, बस मोबाइल

0: पर लगे हैं बात कर रहे हैं तो कई दुर्घटना इस कारण हो रही है।
1: सर ऐसे में क्या है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।
0: हाँ,
1: कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लें, बात कर लें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अर्जेंट फोन है वो ही कर लें, ठीक है, लेकिन चलते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें।
0: बिल्कुल सही कह रहे भागचंद भाई। गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना सुनना है अपने बाजीगर फिल्म का, बाजीगर ओ बाजीगर। हाँ यही बात है, यही बात।
0: सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म बाजीगर का ये गीत।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
1: जी सर।
0: नाम बताएं अपना।
1: ग्राम खैरा संबाबलू कुरुमी।
0: आपका गांव खैरा कहां पर है?
1: खैरा है जो साल नरेवाली के पास में।
0: अच्छा अच्छा बबलू जी, हमें यातायात के कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए कुछ बताएंगे आप?
1: सर जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है और जो है पर मोटरसाइकिल पे भी चल रहा है तो फिर हेलमेट लगा के चलाओ।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बबलू भाई।
1: और गर्मी में जो है पर तौलिया बांध लो।
0: हाँ,
1: जब गर्म हवा न लगे।
0: और हमेशा बाएं साइड चले। पैदल चलने के लिए हम कोशिश करें कि फुटपाथ के ऊपर चलें, और अगर पैदल चल रहे हैं तो मोबाइल कानों में ना लगाएं, हेडफोन कान में ना लगाएं, और सतर्कता के साथ चलें सड़कों पर।
1: जी सर।
0: कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती तो हम अपने गांव के आसपास एकदम से निकल जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, या एकदम से निकल जाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, तो प्रयास करें कि इन चीजों से भी बचना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो देखिए, दुर्घटना कहीं ना कहीं हमें हमारी गलती की वजह से होती है। कोई ना कोई हम हड़बड़ाहट दिखा देते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और अगर हम यातायात के नियम जो सिर्फ हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं तो हम दुर्घटनाओं से बच जाते हैं।
1: जी सर।
0: बबलू भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: हिना मूवी को सुनवा दीजिए।
0: हिना का कौन सा?
1: कोनो भी सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, आइए सुनते हैं बबलू भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म हिना का ये गीत।

अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है पर्यावरण की सुरक्षा, यही होगी मुद्दे की बात। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार सोमवार सुबह 11 बजे से। और श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपने मोबाइल फोन का स्पीकर या मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन ना करें। इसके कारण आपके फोन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे आदिल खान, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे काय भैया, ये सो मोह लटकाए काय को दिए थे?
2: अब का बताएं भज्जा तुमकी, कोनो ये कऊ परेशानी होए तो बतावे। ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सो का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबाऊ जो ढोर बीमार, कबाऊ बो ढोर बीमार, कहूं ये खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगाते है, वो में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा
1: हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20
2: हाँ,
1: और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, वो सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया।

0: 9-7।
1: एक बीर फिर से बता दे भज्जा।
0: भैया फिर से लिख लो, इमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें।

0: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 to 11:30 तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप लोगों ही उसकी

0: की सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है
0: जी। बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है
0: जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप,
1: बिल्कुल हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोता 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का
1: जी जी,
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा जी, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
1: जी,
0: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब,
1: क्या बात है,
0: का
1: क्या
0: संगीत
1: है, क्या बात है।
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल, और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम है मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे दे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे एक दस्तक।

0: मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए,
0: बिल्कुल,
1: वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउसहोल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी। हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं, आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से

0: कि मेरी देखिए तीन चार मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने
1: जी,
0: वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान नहीं है
1: जी,
0: प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के
1: हिस्से।
0: अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गए, 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर होती उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक संत मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इसको मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए
1: जी,
0: बल्कि उसका एक सामाजिक रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था,
1: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
0: यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
1: लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
0: कर सकता है। मतलब आप जयशंकर नसीम की मसरी लीजिए, गुलजार नसीम
1: जी,
0: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
1: जी,
0: कि नेकी करो
1: जी,
0: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हमने जैसा कि अर्ज किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
1: जी,
0: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना सामाजिक नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ, उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया
1: और नए अकदार बने,
0: अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमें लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
1: लेकिन वजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
0: जी,
1: जहाँ तलक ये सितम की सियारा चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: ये
1: आप इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
0: हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे
1: जी,
0: एहतशाम हुसैन साहब
1: जी,
0: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
1: जी।
0: इत्तेफाक
1: तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से
0: शऊरी कोशिश? तो देखिए जनाब
1: जी,
0: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
1: अच्छा,
0: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजानी, कुमार बारबंकी, इस तरह के, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से हमें गालियां पड़ी के साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तन्हा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में 1945 से लेके 1957 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तन्हा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की, 7 साल मैं अकेला रहा हूँ। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहार न हो।
2: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है,
3: जी,
2: जो
3: जी,
2: एक
3: जी.
2: उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है.
3: बिल्कुल,
2: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है. और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहना है.
3: क्या बात.
2: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का

0: गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
1: समारंगीन, समझ गए ना।
0: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
1: जी हाँ जी हाँ,
0: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
1: क्या
0: गाने
1: रेंज, क्या रेंज,
0: रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब, अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ,
1: IAS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, शागिर्द का बड़े मियां दीवाने।
0: आप गाना सुनिए।

0: मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। अमर जी अब
1: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई।

आई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलू नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।
2: कर

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली,
0: सन 1970 में आई फिल्म द

ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म

रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन ने इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने

0: के मौके पर ये थे जानी मानी संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
1: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
2: तू न रोना के तू है भगत।

0: करके तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में।

0: के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम चंचा के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं,

0: अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
1: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
2: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
1: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: भगवान की सूरत।
1: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
2: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
1: फिल्म ABCD2।
3: जब जब मुझे बेहज उठा सवाल मारी तेरी चूनरिया लहरा।
1: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
4: मेरे पास माँ है।
1: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।
5: मुझा?

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए।

0: भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की।

0: लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम है मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपनी श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे,
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का
0: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट

0: सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांव में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मीला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर। इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं, कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच ना होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं। दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं। सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आह तूने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों की लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो। वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नजर नहीं आते उनसे बातें होती हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, है ना? कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है, बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुर लहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं। श्रोताओं, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। श्रोताओ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को नमस्कार, और आज की इबारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नज़दीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नज़दीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफ़र संग प्रश्न पहेलियों का इंतज़ार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नज़र नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियाँ अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटी कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज़्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफ़र, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण

जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वह हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तां

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं, जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, ना वो खत आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे, यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं। वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है।

आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम 1-2 बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो ज़रूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मज़मून भी ऐसा ही है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफ़र में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पाल की रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक हैं परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं, आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

यकीन मानिए श्रोताओ, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओ, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुरलहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने

0: दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या, जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं, और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है, पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: आए, ओ देने वाले।

मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय है। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है, संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में सपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं। जब शामें इतनी तेज़ नहीं भागती थीं और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज़ में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे। तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आँखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेशियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थीं। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेशी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे। बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया। टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुंचे।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत सनी फिल्म से, आवाज आशा भोसले की, आनंद बख्शी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की दो दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी की यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टसन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ है। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन में शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। इससे पहले कल शाम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मांडू के संत महामंडलेश्वर निसर्गदास जी महाराज भोजशाला पहुंचे और पूजा अर्चना की। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। जबलपुर जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। वहीं गेहूं उपार्जन कार्य में विदिशा जिला में 59,000 से अधिक किसानों से खरीदी हुई। इसके लिए जिले में कुल 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें विदिशा अनुविभाग में 51, ग्यारसपुर में 16, गंज बासौदा में 23, कुरवाई में 19, नटेरन में 31, सिरौंज में 20 तथा लटेरी में 14 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के भी अन्य जिलों में भी खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: बताता।
1: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में से 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वयं गणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। ये पहल जनगणना अभियान के डिजिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में जौनपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होने के चलते टारसी से गुजरने वाली 12 ट्रेनें डायवर्ट की गईं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर कोई बस चलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले में कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
5: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
6: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
5: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
0: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
4: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
7: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
4: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
8: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की

0: चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था। राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को शुरू में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

0: नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या।
1: इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतनी

प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मनचाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा। अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनुसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
1: अरे अरे, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनुसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है।
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने

0: के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या
1: नहीं, नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो बुरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे आधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: अरे चक्री, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रही है। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
2: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
2: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा।
2: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ।

जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए

0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
1: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
2: ओ, इन राक्षसों ने फिर से रूठा लिया। मैं अभी जाता हूँ।

0: से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुईया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो
2: हरि ओम, जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कुफ की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ। जा जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुईया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा तब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुईया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुईया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुईया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया, उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो
1: पिता कण्व को इन

0: सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
1: सच? हाँ, तू सच कह रही है प्रियंवदा?
0: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान।
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्वों को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
1: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
2: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
1: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
1: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
2: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
2: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
1: माँ,
2: माँ, प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
1: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आज कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद ही वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं, पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।

0: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
1: हाँ शरणग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि परिजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
0: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
1: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
2: बाबा, बाबा।
1: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
2: बाबा,
1: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
2: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
3: सखी
2: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
1: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
2: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
1: कितनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
2: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल गए तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी।
2: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
2: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
0: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
1: हाँ शरणग्रह, अब हम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक के समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

कन्या सचमुच प्रायतन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत।

कितना संतोष है। महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: सितारा में आज
1: उजाले उनकी यादों।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे पुत्र साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
0: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाग का थॉट था
0: ना, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी,
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था और भी था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी स्ट्रिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की उस बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेट और जैसन में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो, मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो उन्होंने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और स्पेसिफिकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी जो उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का,
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त,
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं,
1: अरे बाप रे
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले, तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: और मैं चिंटू

0: से भी बात कर चुका था, फिर मेरे डॉक्टर उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला अरे ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि वो उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारे घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फना क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं थी
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस फिल्म से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना है वो ने जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर देगा।

0: क्या मौसम है, चल के दूर निकल,
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मैंने जैसी चीज कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट यानी मैंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर, बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास
1: अच्छा
0: करने के लिए, तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था,
1: हाँ, हाँ,
0: वो कुछ हुआ था ऐसा,
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये

0: ये कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की, कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो ज्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था,

0: उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता तो भी आते जाते जैसे कि यहाँ जाना है घर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे शॉर्ट वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली, वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है एक रमेश तलवार को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी
0: मराठी में,
1: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के जी राइटर,
0: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ नाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
1: यस
0: ये था, रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है ये है, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा
1: बाबा
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही,
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख लीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मोरिंग करना, तो मैं स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्हें नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्मों की तरफ ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
1: ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को बोले मैं अभी फोन करती हूँ, उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बात पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आ रहा हूँ, अच्छा दो मिनट में मैं खा उन्होंने फटाफट खाना खा आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया।

0: वाली पिक्चर करूंगी।
1: डन हो गया,
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे। हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है, वो ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी, हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता। मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट में गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा,

0: का रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है, लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब,
0: मैं आपको कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके सामने, मैंने कहा नहीं कोई नहीं है, तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और शुरू करें। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूंगा तेरे, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया,
0: हाँ होगी, और मतलब ये है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिछड़ा लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में, तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो चार चीजें बनती है, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। अब ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी,
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है। या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूसडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम,
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या क्या? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मैं चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल।

0: के तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वो सीन वीन सब मैं ही रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, जब मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है वो क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बार थी ओब्राय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है और मैं ठंडू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा कल, छोड़ा शूटिंग नहीं कर सकता। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
1: अच्छा
0: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गरम बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत

0: और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान।
1: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है और दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा, सतत विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का कल का जला हुआ कोच लूनी रीछा स्टेशन पर पहुंच गया। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच कर रही है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2-3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा एक और विषय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें, पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात। क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही दोस्तों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। दोस्तों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें दूरसंचार ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। इसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 17 मई सन 1865 को हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ाना तथा डिजिटल असमानता को कम करना है। दोस्तों, दूर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले समय में संदेश भेजने के लिए पत्र, दूतों का सहारा लिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं दूर संचार की ही देन है। दोस्तों, सूचना समाज का अर्थ है ऐसे समाज से जहां ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होता है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं और व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही यदि इंटरनेट और दूरसंचार

0: सुविधाएं न होती तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी और इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करना बेहद आवश्यक है। भारत में भी डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंच पा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यह देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में संचार और सूचना तकनीकी के महत्व को दर्शाता है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।
1: हेलो हेलो,

0: देखो ना कैसा मौसम है।
1: आ जाओ ना।
0: ना बाबा ना, यही तो मुश्किल है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क, आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो हृदयघात, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। अत्यधिक नमक का सेवन, तेलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मानसिक तनाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को शारीरिक रूप से कम सक्रिय बना दिया है, जिसके कारण युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों का निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के बचाव के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद, कम नमक का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनमें 7 बातें प्रमुख रही। पहली, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विदेश यात्रा टालने की अपील की। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग पर जोर देने को कहा। खाद व केमिकल का उपयोग कम करने को कहा। स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। साथियों पेट्रोल डीजल की कम खपत से हमारा ही फायदा है। यदि हम वाहनों का उपयोग सीमा में करें तो पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी। इससे पेट्रोल डीजल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। साथियों इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पर्यावरण का भी बहुत फायदा होगा, अर्थात प्रदूषण कम होगा। दोस्तों साथ ही इसके पीछे का एक और कारण विदेशी मुद्रा का बचाव भी है। दोस्तों यदि आप पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभप्रद है। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारी आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग मोबाइल एडिक्शन अर्थात मोबाइल की लत कहलाता है। यह समस्या आज बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस करना और हर समय मोबाइल का उपयोग करते रहना। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने तक इसका उपयोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो और चैटिंग ने लोगों को मोबाइल का आदि बना दिया है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने लगी है। दोस्तों मोबाइल की लत का सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आँखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्या होने लगती है। लगातार मोबाइल चलाने से गर्दन और पीठ में दर्द भी होने लगता है। साथियों देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी भी उत्पन्न होती है। साथ ही मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और परीक्षा परिणाम प्रभावी होते हैं। साथियों मोबाइल की लत से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और गेम से दूर रहना चाहिए। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग करते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। दोस्तों मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभप्रद है। हमें तकनीक का गुलाम बनने की बजाय उसकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन और अच्छे संबंध, उज्जवल भविष्य के लिए मोबाइल एडिक्शन से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं।
2: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
3: मैं सागर हूं।
2: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
4: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
2: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
5: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
6: और नासिर का
2: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। आज के संक में बात होगी 3R की।
7: मैं डॉक्टर संध्या पाठक आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। आज यदि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम अपने घरों से निकलने वाले कचरे की भी बात करें तो म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें या फिर मेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। यदि इन वेस्ट मटेरियल का उपयुक्त तरीके से निवारण नहीं किया जाए तो बहुत खतरनाक स्थिति में आज हम इनको पाते हैं। जनरली हम यदि म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करें तो घर में कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियां आती हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए कई बार उनको सेग्रीगेट करके भी नहीं देते। कचरा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट मटेरियल है वो तो अपघटित हो जाता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसमें ग्लास है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, ये सब और ई वेस्ट है, ये आज की एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इनका यदि उपयुक्त तरीके से निवारण नहीं किया जाए तो ये हमारे धीरे धीरे ज़मीन के अंदर भी परकुलेट होकर हमारे जो वाटर सिस्टम्स हैं, ग्राउंड वाटर को भी प्रभावित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स जो हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं, बहुत सारी सामग्री जिनका हम उपयोग किए बिना हमारा कार्य संभव नहीं होता। बट इस दिशा में यदि देखा जाए तो 3R का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। यदि हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें प्लास्टिक की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होता है जो रिसाइकलेबल है, जिसको जनरली थर्मोप्लास्ट नाम से जाना जाता है। दूसरी कैटेगरी है थर्मोसेट, जो एक बार जिस शेप में मोल्ड हो जाता है फिर उसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। हम दैनिक जीवन में देखें तो हर क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और प्लास्टिक जब हीट के कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब यदि कोई भी गर्म चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर में रखी जाती है, तो बहुत सारे कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स जनरेट होते हैं जो अलग अलग टाइप के कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि कभी भी गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर्स में मत रखिए। इतना पहले स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज यदि हम मॉडर्न टाइम में हम देख रहे हैं तो आधुनिकता के साथ साथ बहुत सारी आपकी और हमारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण यदि हम देखा जाए कारण इस प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। तो यदि हम 3R की बात करें तो रिसाइकलेबल मीन्स हमको ऐसा मटेरियल, ऐसे प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करना है जिसको रिसाइकिल किया जा सके। दूसरी बात हम करें कि हम अपनी रिड्यूस मीन्स हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें, रीयूज़ करें। यदि हम पॉलीबैग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम कई बार यूज़ करें। और इसके साथ ही साथ हम अपने इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर यदि हमारा कोई भी मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है तो उसको यूज़ एंड थ्रो के को छोड़कर हम उसको यदि रिपेयर कराएं तो हम और कुछ लंबे समय तक उसको उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे इस विचारों में सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो ऐसा मटेरियल जनरली यूज़ किया जाए जो रिसाइकलेबल है, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें, जिससे या फिर वो जो चीज़ हमारे पास है वो हम उसको कई बार उपयोग करें। क्योंकि यदि हम अपने अस्तित्व को चाहते हैं तो प्रकृति के साथ हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलना ही होगा। प्रकृति के संरक्षण के साथ यदि हम ध्यान नहीं देंगे संरक्षण करते हुए तो हम अपने आगामी भविष्य की अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आज हर जगह आप देखेंगे

0: ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है जो वर्तमान परिदृश्य में सभी को ही अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे और प्रकृति के साथ हम अपने जीवन की कल्पना कर पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ ही सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना।
1: ये है नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री।
2: RRR का सिंपल जो अर्थ है कि हमें चीज को रीयूज करना है, रिसाइकिल करना और रिड्यूज करना है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट रिसाइकिल भी हो जाता है, रीयूज भी हो जाता है, और रिड्यूज वाला जो पार्ट है जिसमें कि जो सबसे बड़ा हमारे पास जो कचरे का जो सबसे बड़ा जो पार्ट निकलता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का निकलता है। अगर ये हम अपने मार्केट से इसको जो है कम कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम कचरे को कम करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। लोगों से अपील की जाती है कि वो अपने घर से जब भी निकलते हैं, कोई सामग्री लेने निकलते हैं, तो अपने घर से थैला लेके जाएं, जैसे हम लोग पुराने टाइम पे लेके जाते थे। तो वो जो सारी चीजें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रतिबंधित हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा 50% तक हम आ सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। क्योंकि हम हर दिन शहर साफ करते हैं और हर दिन जो शहर गंदा होता है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बड़ा योगदान होता है। मैं अगर अपने बचपन में जाऊं और ये चीज के पुनर्उपयोग के बारे में देखूं, आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग बहुत सारी चीजें जो पुनर्उपयोग हो सकती थी उनको संभाल के रखते थे, चाहे वो डब्बे हों, चाहे थैले हों, या छोटे छोटे से कैश आते थे जो अपन को बाजार से सामग्री हम खरीद के लाते थे, उनका वो पुनर्उपयोग करते थे। तो ऐसे हमारे घर में भी हम तमाम तरह की चीज़ें ऐसी लाते हैं मार्केट से जो थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में होती हैं, बट उनका आकार प्रकार लगभग सेम होता है, जिन पे चीज़ों का हम स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से पैसा खर्च करते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने घर में जो भी आप चीज़ें लेके आ रहे हैं और उनमें से तलाशिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो कृपया करो उनका ही उपयोग करें, इससे आपको दो तरह के फायदे होंगे। एक, जो पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। दूसरे, कहीं ना कहीं आपका जो बजट है वो भी कम खर्च होगा आप उनको स्टोर करने। फॉर एग्जाम्पल पैन कैश जैसे आपके चीज को जो आप पैसा खर्च करेंगे उस तरह का आइटम आपके पास हो सकता है कि आप कोई चीज खरीद लाए उस तरह के पैन कैश टाइप का कोई चीज दूसरी आपको मिल जाए। बच्चों को भी इस दिशा में क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, रीयूज रिसाइकिल की चीजों के लिए, तो उनके भी बौद्धिक विकास में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। तो RRR एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे न केवल आर्थिक बचत तो होती है, पर्यावरण की भी रक्षा होती है और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी को भी आप और आपके बच्चों में दोनों में डेवलप करते हैं। अभी जो है हमने अभी जैसे कि 3 चौराहे हमने एक राहतगढ़ बस स्टैंड पे तोप रखी हुई है, कालीचरण चौराहे पर जो है मिसाइल रखी हुई है, और ये जो है जिला पंचायत चौराहे, चूंकि आपका आकाशवाणी भी नजदीकी था तो कहीं ना कहीं हमें सलाह आई कि रेडियो आकाशवाणी चौराहे के आसपास होना, जिससे कि रेडियो के लिसनर्स को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। और जैसे कि आपने खुद ने भी कहा कि जब चीजों का पुनः उपयोग करके बनाया गया तो शहर में उसकी एक अच्छी प्रतिक्रिया है और लोगों में उद्देश्य में एक तरीके से जागरूकता भी बढ़ी है कि चीजों का पुनः उपयोग जो है किया जा सकता है। अब हमारे पास बहुत सारे इस तरह के आइटम बन बन के कुछ खासकर बच्चे जो है इस बात से ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने इस दिशा में अभी कदम बढ़ाए हैं और कुछ अच्छी कलाकृतियां वो हमको उपलब्ध आके कराते रहते हैं।
1: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
3: और नासिर को।
1: नमस्कार।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
4: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
5: मैं सागर हूँ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण शाम के पांच बजे

कर 40 मिनट हुए हैं। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं गीत, गजल और कव्वाली। सबसे पहले ये गीत

0: बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: और अब संगीत सरिता के अगले क्रम में आइए सुनते हैं यह गजल। तलत अजीज की आवाज है, सरदार अंजुम के बोल, और धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये कव्वाली। शंकर शंभू कव्वाल और साथियों से पारस रूमानी के बोल हैं, धुन रामकुमार शंकर की है।

और इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, शाम के 6 बजने को हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: साइकिल।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है सदाबहार गीत और यह पहला सदाबहार नगमा है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। SH बिहारी के बोल हैं, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: कार्यक्रम सदाबहार गीत में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है राजकुमार।

हसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलूं।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से शाम के 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग के तहत। पहला लोकगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आवाज दी है देवी सिंह राजपूत ने।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये लोकगीत राधा खरे की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से कार्यक्रम लोकरंग। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये लोकगीत राजू पटेल और साथियों की आवाजों में।

इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, शाम के 7 बजने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में

0: और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉबी एटन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउद डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 223 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM 102.6 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। सुनिए हमारे स्टूडियो से कल प्रसारित और अनप्रसारित होने वाले कार्यक्रम और आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुनेंगे। 6:25 पर होगा कार्यक्रम विवरण। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुने जा सकेगा कल सुबह 6:30 पर। 6:40 यह वक्त होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के लिए। संस्कृत में समाचार दिल्ली से रिले करेंगे 6:55 पर। प्रातः 7 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 यह वक्त होगा कार्यक्रम कृषि संकेत सुनने का। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। मंचाय गीत सुनिएगा सुबह 7:20 पर और 7:45 पर संगीत सरिता। 8 रिले करेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोकरंग लोक संगीत।

Eta. साप्ताहिक कार्यक्रम बिंदिया सुनिएगा कल सुबह 8:30 बजे। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी 10 बजे रिले करेंगे भोपाल से। 10:05 पर होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोक गीत सुने। और 11 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग। 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण सुनिएगा, जिसमें फिल्म संगीत भोपाल से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2:10 पर भोपाल से, दिल्ली से रिले करेंगे दोपहर समाचार दोपहर में 2:15 पर। और दिन में 2:30 बजे से फिर एक बार विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे मुंबई से। शाम 5 बजे सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां भोपाल से, और भोपाल से युवाणी होगी शाम 5:02 पर। कल शाम 5:30 पर आनंद लीजिएगा संगीत सरिता का। शाम 5:30 और 6 बजे विविध भारती का प्रसारण होगा मुंबई से। शाम 6:30 बजे सदाबहार गीत। 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग। 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से। शाम 7:05 पर होगा कार्यक्रम विवरण, और 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे। शाम 7:20 पर लोकरंग, और शाम 7:30 पर भोपाल से रिले करेंगे ग्राम सभा। कल रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत, और 8:20 पर संगीत सरिता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से रिले करेंगे, और 9 बजे होंगे मन चाहे गीत, और 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। ये थे हमारे कल के कार्यक्रम। और आज के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार भोपाल से। 7:20 पर सुनिएगा लोकरंग। 7:30 बजे भोपाल से रिले करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर होगा डगर विकास की, ये भी कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:30 बजे चित्रपट संगीत सुनिएगा। 9 बजे मन चाहे गीत, और 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने को है, प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: थोड़ी ही देर में।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: तो पार्टी चाहिए,
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: इज द पार्टी। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। आज विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों को विश्व दूरसंचार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेटकर विश्व को परिवार जैसा बना दिया है, जीवन सहज हुआ है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं पहल करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में एक निजी रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण

0: अभियान 2026 में शामिल हुए। उन्होंने यहां लगाई गई विकास और वैचारिक प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
1: कम से कम दुनिया का भय भला नहीं किया, रोटी भी नहीं मिली, अभ्यर्थी की स्वतंत्रता भी चली गई। अमेरिका जैसे देश आए, हमारे एक हाथ में रोटी है, एक में अभ्यर्थी की स्वतंत्रता है। मतलब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भारत जिस पश्चिम के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा है, तब वो पश्चिम सुखी है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जरा अपने देश की तरफ भी तो देखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम राष्ट्र समाज जीवन की रचना करके देश को सुखी बना सके, लोगों का कल्याण कर सके।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। सीहोर में आज अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुना जिले में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने ही घर से निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बू जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। लोकगीत सुनने से पहले

0: आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
2: अरे काय भैया, ये सब मोल लटकाए काय कहूं देते?
3: अब का बताएं भज्जा, तुमकी कोनो ये कहूं परेशानी हो तो बतावे। ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
2: अरे भैया ये सब का होगा, किसी तो बताओ।
3: अब तो मैं का बताएं भज्जा, कबाऊ जो ढोर बीमार, कबाऊ वो ढोर बीमार, कहूं ये खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
2: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
3: अच्छा अच्छा
2: हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20। हाँ, हाँ। और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
3: और सीधो लग है कछु वो करना पड़े।
2: बड़े समझदार हो। हाँ। इमे कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, वो सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया,

0: 9-7।
1: एक बार फिर से बता दे भज्जा।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और नेला बता फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा। हाँ। ये सर राम भाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। हाँ। लगाओ।

0: का व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: और अब ये सुनते हैं ये लोक गीत निरंजन कुमार शर्मा की आवाज में।

निरंजन कुमार शर्मा के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ। यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को हैं। अगला प्रसारण भोपाल से होगा बस कुछ ही देर में।

नमस्कार किसान भैया हरो। हेलो ग्राम सभा के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी को बहुत ही स्वागत है। और आज की हेलो ग्राम सभा में आप सभी सुने अपने पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे फोन करके सीधे बात कर सकते हैं स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से। आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, डॉक्टर अशोक वर्मा जो विभागाध्यक्ष हैं कृषि संकाय में RNTU में। और देखो किसान भाइयों, अगर आपको समस्या से का समाधान लेना है तो आप सीधे प्रश्न कर सकते हो। तो फोन नंबर आपको मैं जल्दी से बताती हूँ, आप नोट कर लें, 0755-266-0902 और 266-0903। और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कृषि कार्य के बारे में

0: आप जानकारी ले सकते हैं। तो जब तक हम करते हैं अपने डॉक्टर साहब से बात, तब तक आप लगाइए हमें फोन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम। और आज हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत इंतजार कर रहे थे आपका सर, कि आप आएंगे और हमारे जो किसान भाई हैं उनको बताएंगे कि ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य, क्योंकि हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम सबका पसंदीदा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले
1: बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, किसान भाइयों को।
0: जी, अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन की बात करें तो ये एक समय ऐसा होता है कि जायद की फसलों के लिए बहुत समसामयिक माना जाता है। तो अभी कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे खेतों में है किसान भाइयों?
1: देखिए अभी जो मुख्य फसल है जायन के समय में, तो अधिकतर क्षेत्रों में मूंग की फसल, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मूंग की फसल काफी क्षेत्र में बोई जाने लगी है। और जहां पानी की जहां पानी अच्छी मात्रा में है तो किसान भाई मूंग की फसल ले लेते हैं।
0: हेलो,
1: तो इसके अलावा भी हम अगर मान लो हम बात करेंगे तो बेलवर्गीय सभी फसलें।
2: उमा शंकर जी मिली जा रही है, आप इंतजार करिए, थोड़ा होल्ड करिए, मैं आपकी बात कराती हूँ।
1: बेलवर्गीय सभी फसलें सब्जियां इसमें ली जा रही हैं। और जहां तक कि हम फल फ्रूट की बात करें तो अभी आम अभी फलन पे है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ बीमारियां कीड़े इसमें लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको देखते रहना, निरंतर निगरानी करनी है। और अमरूद की हम बात करें या फल की बात करें तो अमरूद में हमें देखरेख करनी है। और जिन खेतों में अभी खेत खाली हैं तो उनमें किसान भाइयों को मिट्टी का नमूने लेने हैं, और नमूने के आधार पर अगर मान लो उसका जो भी मिट्टी के नमूने से जो भी इसमें रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से
0: जैसे अनुशंसा मिले वैसे आपको काम करने हैं।
1: मात्रा में
0: बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर हम जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख रूप से मूंग को माना जाता है, तो अगर हमारे किसान भाइयों ने मूंग अगर रखी है तो उसके लिए क्या आप अनुशंसा करते हैं?
1: देखिए अभी मूंग अगर मान लो समय से लगा दी होगी तो लगभग अभी 30 से 35 दिन की मूंग हो गई होगी, और फ्लावरिंग या फूल पे या फलियों पे होगी मूंग। तो उसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि अगर मान लो कोई बीमारी, उसमें निरंतर निगरानी करनी है, उसमें अगर मान लो कोई बीमारी या उसमें कीड़े का प्रकोप या माहू या सफेद मक्खी का प्रकोप उसमें दिख रहा है तो उसमें आपको उचित अनुशंसित मात्रा में उसमें दवाई आपको स्प्रे करनी है। अगर मूंग ठीक दिख रही है, अगर मान लो आप एक या दो स्प्रे कर चुके हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि स्प्रे करने की आवश्यकता लगे, तभी आपको इसमें दवा की स्प्रे करना है। आपको किसान भाइयों को सिर्फ निगरानी करनी है। और फलियों में अगर मान लो कई बार देखा फलियों में फली इल्ली भी आती है उसमें, और माहू की समस्या इस समय जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी अगर मान लो बढ़ रही है, पानी देते हैं इसमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे समय में माहू और दूसरे कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। अगर जैसे बादल से हो रहे हैं या बादल का मौसम है या कहीं पानी गिर गया तो ऐसे समय में भी कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है।
0: बिल्कुल, आपने कहा कि अभी जैसे कि कभी भी बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ये जो अचानक से मौसम परिवर्तित होता है, ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें?
1: वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बताया कि किसान भाइयों को उसमें ऐसे समय में जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बादल हो गए या पानी गिर गया, तो ऐसे समय में किसान भाई को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो खेत की या वातावरण की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण बीमारी और कीटों का प्रकोप अधिक होने लगता है। तो ऐसे में किसान भाई फसलों के निरीक्षण करते रहे, देखते रहे।
0: अच्छा, उमा शंकर जी आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
1: अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसमें दवाई डालने की, अगर थोड़ा भी अगर मान लो उसमें कीड़े या बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं
0: तो तुरंत उपचार करें। बिल्कुल, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
0: उमा शंकर जी बोल रहे हैं सागर से?
3: जी जी जी।
0: तो क्या सवाल है आपका उमा शंकर जी? पहले ये तो बताइए सागर के मौसम का हाल बताया।
3: मैम बातचीत से गर्मी पड़ रही बहुत जम के।
0: बहुत गर्मी पड़ रही है?
3: जी जी मैम।
0: अच्छा, तो क्या सवाल कर रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ से?
3: मैम मेरा एक सवाल तो ये है कि मूंग तो है ही मेरी लगी हुई है थोड़ी सी, तो उसमें क्या है थोड़ी पत्तियां सी सूख रही हैं।
0: और
3: दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि भिंडी लगाई है, भिंडी में सूख मतलब ये जाला जाला सा बन जाता है और सफेद हो रही है भिंडी
0: जी, डॉक्टर साहब बताइए जरा।
1: देखिए भिंडी में अगर मान लो जारला हो रहा है तो उसमें मकड़ी का प्रकोप होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, है ना। मकड़ी आप देखिए उसमें से पत्तियों के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपको लाल लाल से धब्बे जैसे दिख रहे होंगे, आप देखिएगा, है ना। तो ये रेड माइट होती है, उसके इलाज के लिए आपको एक माइटीसाइड दवा आती है, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और जहां तक आप जैसे बोल रहे हैं कि सफेद सफेद जैसे उस पर पत्तियों पे अगर ऊपर तरफ उसके लग रहा है सफेद सफेद, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू भी इसमें आती है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है या टेम्परेचर अधिक है और ह्यूमिडिटी अधिक है, तो उसमें ये फफूंद नाशक की आवश्यकता होगी आपको स्प्रे करने की। तो कार्बनिज्म आप कार्बनिज्म 50% में आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के मान से आप उसमें स्प्रे कर दीजिए, तो ये अगर मान लो पाउडर मिल्ड्यू का उसमें प्रकोप हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बात उद्यानिकी फसल की बात हो रही है, भिंडी की बात हो रही है, क्योंकि भोजन वाली बात है, ऐसे में जैविक क्या उपाय कर सकते हैं हमारे
1: किसान? देखिए जैविक के लिए टेम्परेचर अधिक रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैविक में नीम ऑयल का एक बहुत अच्छा, नीम ऑयल एक बहुत अच्छा
2: कीटनाशक
1: कीट नियंत्रण करता है। और ये 300 ppm, 1000 ppm और 10000 ppm, 3000 ppm आता है।
2: तो लाइन पर बने रहिए, हम आपको
1: का स्प्रे आप अगर मान लो निरंतर करते रहेंगे 5 ml 1 liter पानी में मिला के, तो ये प्रकोप आपको पहली बात तो आएगा नहीं, अगर मान लो जैविक तरीके से आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप निरंतर उसमें निगरानी करते रहिए, अगर हर 10 दिन 15 दिन में आप 15 दिन के अंदर नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो आपको उसमें कीड़े नहीं,
0: फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। तो हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे? हेलो
4: नमस्कार, मैं नरेंद्र जी बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
0: नरेंद्र जी, सीहोर का क्या मौसम है, कैसी क्या फसलें लगी है?
4: मैम मूंग की फसल लगी है, मौसम तो मैडम वही 40-42 के हवा में टेम्परेचर चल रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, तो क्या प्रश्न है आज आपका?
4: मेरा ये प्रश्न सर से कि हमने मूंग लगाए थे, उसमें सफेद इनका बारीक इल्लियां लग रही है और कुछ पौधे मैडम नीचे से आनी घानी से काले पड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, नीचे मूंग बारीक इल्लियां लग रही है। जी
1: देखिए इल्लियां लग रही है तो उसमें एक एंडोस्कार्प नाम की दवा आती है 15.8 SC में, करीब 120 से 130 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं इल्लियां के लिए। और एक इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप इसको लगभग 90 ग्राम प्रति एकड़ के मान से, सेव जैसी दवा होती है आपने देखा होगा 5 SG में आती है, उसको आप स्प्रे कर दीजिए। इल्लियों का प्रकोप हो रहा है तो ये बिल्कुल चली जाएगी। एक क्लोरोट्रेनी प्रोल नाम की दवा होती है, इसको 18.5 SG 40 ml प्रति एकड़ के मान से इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, तो ये इल्लियां आपकी इल्लियों का प्रकोप।
2: कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: ये तीन में से कोई भी एक दवा, तीनों नहीं डालनी, तीनों में से कोई भी एक दवा जो आपको,
2: आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात कर,
1: इसको आप आराम से डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे एक और किसान से हम बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे?
5: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार भैया,
5: डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से नियमित श्रोता हूँ।
0: जी जी, बिहार से फोन करे हैं
5: जी।
0: तो भाई बिहार में कैसा क्या मौसम चल रहा है, गर्मी पड़ रही है कि पानी गिर रहा?
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, आम लीची सब गर्मी से सूखा जा रहा है।
0: सूखा जा रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब से प्रश्न है बिहार से?
5: जी मूंग जो है ना पूरा पुष्ट दाना वाला फल नहीं आ रहा है।
0: अच्छा,
1: क्या पूछ रहे हैं थोड़ा सा एक बार?
0: दाना ठीक से नहीं आ रहा है मूंग में?
1: मूंग में दाना नहीं आ रहा है। देखिए मूंग में दाना नहीं बनने का कारण है, आपने उसमें कुछ खाद वगैरह डाला था क्या मूंग में?
5: जैविक डाला था।
1: हाँ
0: जैविक डाला था,
1: जैविक डाला था। देखिए जैविक के साथ में थोड़ा सा पूरा जैविक खेती कर रहे हैं क्या आप?
0: बाद में जिंक मिला दिया था इन्होंने।
1: अच्छा जिंक मिला दिया था। देखिए मूंग में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है, फास्फोरस और पोटास लगता है, है ना। तो अगर मान लो उसमें दाने कम बन रहे हैं तो अभी भी आप उसमें 0-52-34 का एक स्प्रे कर दीजिए, 0-52-34 का एक स्प्रे कर दीजिए तो दाने थोड़े अच्छे बन जाएंगे। कितनी फली अभी फूल आ रहे हैं कि अभी फली
5: लेकिन पुष्ट दाना नहीं बनता अंदर में?
1: हाँ तो उसमें 0-52-34 आप एक स्प्रे कर दीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से, है ना। ये घोल को इस पे स्प्रे कर दीजिए पूरी फसल पे, तो दाने अच्छे बन जाएंगे और भर के आएंगे, है ना।
5: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: हाँ।

0: उसमें क्या खाद की कमी लग रही है मुझे, जैसे आप बता रहे हैं खाद की कमी है ना।
1: तो हमारे जो जागरूक किसान हैं वो लगातार हमें फोन कर रहे हैं, और आकाशवाणी केंद्र भोपाल से हमारे किसान भाई सुन रहे हैं। आप

0: लोगों को जो समझ लो कि गर्मी पड़ रही बहुत जोर से
1: है।
0: तो बस हम जो टिकटिकी लगी थी कि रविवार आ जा सो हेलो हेलो ग्राउंड से फोन लगा।
1: बिल्कुल मनोज भैया, हम भी पूरी बिल्कुल हफ्ता भर इंतजार सोई करा थे कि भैया हमारे भैया हरों से बातचीत हो जाए तो और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो आज डॉक्टर अशोक वर्मा बैठे हैं अपने सामने और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में सामसामयिक कृषि कार्य में प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
0: जी बिल्कुल दीदी, हम जो प्रश्न कहानों के हमारे खेत में भटा लगे थे और अभी भी लगे, लेकिन क्या हो रहा हुआ है कि अभी 8-10 दिन पहले थोड़ा बूंदा बांदी हो गई थी तो बाद ना से भटे को ऐसा मर्ज से बिगड़वा है कहानों के भटा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल हल्के हल्के से रह गया। कितना कितना देखो सो वहाँ में थोड़ी सी इली भी लग रही है।
1: तो कितने दिन के हो गए भटा आपके?
0: दीदी क्या कह रही हैं आप?
1: कितने दिनों के हो गए हैं?
0: दीदी अबे तो भटा खूब तोड़ रखे हैं, हम बेच में जाते हैं।
1: अच्छा, तो फलन हाँ। पे हैं पूरी तरीके से?
0: हाँ,
1: जी
0: बिल्कुल।
2: देखिए मनोज जी, उसमें दो चीज हो सकती है। एक उसमें ये जो ये आपके जो सब्जी है फल है उसमें मक्खी आती है ना, मक्खी कह रहा हूँ आपके, इल्ली आती है ना, फ्रूट उसको बोलते हैं फ्रूट बोरर है, और एक शूट बोरर होता है। दो तरह के इसमें कीड़े हैं, फ्रूट और शूट बोरर। तो इसके लिए आपको अगर मान लो पत्तियां आपको दिख रही हैं मुरझी हुई हैं, ऊपर की तरफ की पत्तियां अगर मान लो मुड़ रही हैं या मुरझा रही हैं, तो उसमें ये इल्ली का प्रकोप है या शूट एंड फ्रूट बोरर। तो उसमें आपको दवा डालनी पड़ेगी। और खाद पानी अगर मान लो आपने दिया है, खाद पानी आपने अगर मान लो दिया है, DAP वगैरह दिया है, तो आप जैसे बता रहे हैं उसमें बढ़वार नहीं हो रही फलों की क्या?
1: जी हाँ, इनके कम फल लग रहे हैं
2: तो उसमें बढ़वार नहीं हो रहे। तो DAP तो आपने डाल चुके हैं, तो उसमें आप 0-52-34 और 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपके फल फूल अच्छे लगेंगे। और अगर मान लो उसको इल्ली का प्रकोप है तो उसमें कोई भी एक इंसेक्टिसाइड इंडोस्कार्ब हो गया या आपका क्लोरोपायरीफास एक स्प्रे आप उसमें कर दीजिए, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें एक स्प्रे कर दीजिए, अगर इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो, है ना। बाकी उसमें कोई समस्या आप देखते रहेंगे तो उसके हिसाब से उसमें नियंत्रण के उपाय करते रहिए।
1: बिल्कुल। एक और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार।
1: कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं ग्राम बड़ा गाँव तहसील कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
1: जी धाकड़ जी, कैसे हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया। बताइए भैया, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न ये है, अनार का पेड़ है अपने, उसमें अनार के पेड़ में इल्ली है।
2: अच्छा,
1: कितने दिन का पेड़ हो गया है आपका?
4: जो हो गया 4-5 साल का हो गया
1: जी।
2: खेती कर रहे हैं क्या आप उसमें, कि ज्यादा पेड़ हैं कि एक आध दो ऐसे हैं?
4: एक आध दो ही है घर। अच्छा। में है अपने घर में, मकान पे ही बोप रहे हैं।
2: हाँ।
4: जी
2: तो देखिए, अगर फल के अंदर आपके इल्ली आ रही है तो उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड आप उसमें इल्ली वाली आती है, जैसे क्लोरोपायरीफास से भी हो जाएगा है ना, क्लोरोपायरीफास दवा आती है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए तो इससे इल्ली का प्रकोप चले जाएगा। एंडोस्कार भी आप डाल सकते हैं, दोनों दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए तो इल्ली खत्म हो जाएगी। उसमें क्या फल के अंदर कुछ स्पॉट जैसे भी दिख रहे हैं क्या, भूरे भूरे?
4: हाँ जी सर, मतलब जो अनार को अपन मतलब फोड़ के देखते हैं तो वहाँ में काला काला निकलता है।
2: हाँ, तो उसमें एक बीमारी भी होती है, एंथ्रोग्नोस आता है उसमें। अगर बीमारी है तो उसके एक फंजीसाइड भी उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, है ना, प्रोपिकोनाजोल एक स्प्रे कर दीजिएगा, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, तो वो अगर कोई फफूंद टाइप की बीमारी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल। ये जो फल और सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई जैविक उपाय करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जैविक उपाय करते समय किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें?
2: देखिए जैविक उपाय किसान भाई अगर मान लो करना चाह रहे हैं तो उसको शुरू से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में जैसे किसान भाई सबसे पहले अगर मान लो उसको बीज को लगा रहे हैं तो उसमें बीज उपचार कर
1: शुरू से ध्यान रखें। बिल्कुल, आपकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
5: हेलो,
1: कौन सा आप बोल रहे हैं?
5: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज बासोदा से।
1: अच्छा जी साहू जी, गंज बासोदा से बोल रहे हैं।
5: कैसी हैं आप?
1: बढ़िया भैया बढ़िया, आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। हेलो ग्राम सभा, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: हमारा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है, मूंग लगी हुई है हमारी
1: जी,
2: जी।
5: तो

0: इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, ऐसी कौन सी दवा डाली जाए जिससे निजात हो?
1: जी
2: देखिए, एक आध स्प्रे कर चुके हैं क्या उसमें? एक आध दवाई डाल चुके हैं?
0: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार, एक आध दवाई डाल चुके हैं क्या उसमें कोई सी?
0: नहीं अभी तो नहीं डाली, अभी नहीं दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही, हम कल से देख रहे हैं तो इल्ली दिख रही है कहीं कहीं।
2: तो एक क्लोरोट्रानिलप्रोल आती है दवा, है ना, वो मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, वो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना, 18.5 SC उसका उसमें रहता प्रतिशत रहता है, 40 मिलीलीटर एक एकड़ में आप उसको स्प्रे कर देंगे, 100 ml की छोटी डब्बी आती है, तो वो करीब उसमें जाएगी, 100 एक हेक्टेयर में जाएगी, 2.5 एकड़ में जाएगी, उसका पहले स्प्रे कर दीजिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, एक बारिश में ही आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर वो नहीं अवेलेबल तो इंडोस्कॉर्प भी यूज कर सकते हैं, स्पेनोसिड भी यूज कर सकते हैं आप, दो तीन तरह की दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी।
1: ये आप जब जब दवा की मात्रा बता रहे हैं और उसके डालने का तरीका भी बता रहे हैं, कभी कभी हमारे किसान भाई सोचते हैं ज्यादा दवा डालते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए ये किसान भाई को बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कभी भी जो अनुशंसित मात्रा है वो उस मात्रा से कभी भी दवाई ज्यादा ना डालें,
1: अपने मन से कुछ ना करें,
2: ज्यादा ना डालें ना कम डालें,
1: बिल्कुल
2: कम डालेंगे
1: तो फायदा नहीं होगा,
2: तो फायदा नहीं होगा, और ज्यादा डालेंगे तो रेजिस्टेंस पावर
1: बिल्कुल
2: डेवलप हो जाएगा।
1: एक फोन और हम ले लेते हैं आपकी आज्ञा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और किसान भाई। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: नमस्कार महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी तोमर जी कैसे हैं?
3: आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी,
1: भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। भैया क्या सवाल है आज का?
3: सवाल मेरा ये है कि मैंने कद्दू वर्गी सब्जी लगाई, उसमें कद्दू में फूल आ रहा, फल नहीं भर रहे हैं।
1: अच्छा, कद्दू वर्गी फसल में फूल आ रहा है, फल नहीं आ पा रहे हैं। जी बताएं डॉक्टर साहब।
3: कद्दू की फसल में?
2: हाँ कद्दू की फसल में ना, तो इसमें खाद वगैरह आपने अच्छे से डाला था? खाद वगैरह
3: बिल्कुल बिल्कुल जैविक खाद डाला है, कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में डाला।
2: अच्छा, तो उसमें फल मतलब जो फूल से फल जो बनता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्या?
3: हाँ फूल बन रहा है लेकिन फल एक भी नहीं बना अभी तक।
2: नहीं इसमें क्या जनरली ये सब्जियों सब्जी वर्गियों में फसलों में क्या होता है, हमें ये खाद की मात्रा में अच्छी देनी पड़ती है ना, अगर याद उसमें क्या भूरे भूरे कुछ इसमें स्पॉट हो रहे हैं या सड़न जैसी टाइप की दिख रही है क्या?
3: नहीं कोई नहीं, कोई रोग नहीं लग रहा है, केवल अच्छी तरह से बढ़ रहा है, फूल आ रहा है।
2: हाँ या तो ठीक है, आप फिर उसमें अगर नहीं है तो कुछ खाद वाली चीज जैविक डाल रहे हैं तो आप इसमें सागरिका एक दवा आती है समुद्र घास से जो बनती है, उसको आप 5 मिलीलीटर स्प्रे कर दीजिए, उसमें क्या सभी तरह के पोषक तत्व, तो मुझे जो लग रहा है पोषक तत्व की कमी है तो उसमें सभी तरह के पोषक तत्व, जैविक दवा है, जैविक तरह की वो खाद की दवा है, तो उसको आप डाल देंगे तो उससे आपका ठीक हो जाएगा।
1: बिल्कुल, पोषक तत्वों की बात हो रही है तो जब अगर हम फसल बोते हैं तब इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बीज उपचार अच्छे से हो। तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: जगवान सिंह बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: ग्राम सगोरिया तहसील बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से जगवान सिंह ठाकुर बोल रहे हैं।
1: जी भैया ठाकुर साहब कैसे हैं?
4: है मैडम आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं भैया। तो क्या प्रश्न है आज आपका?
4: प्रश्न ये है कि थोड़ी गिलकी के सैकड़ा पेड़े लगा है 100 के लगभग,
1: हाँ हाँ,
4: उनमें फूल आ रहा है और मुड़ जाके झड़ रहे हैं।
1: जी गिलकी में फूल आके मुड़ के झड़ रहे हैं।
2: नहीं कौन से वाले झड़ रहे हैं? एक उसमें दो तरह के फूल होते हैंगे, एक मादा फूल एक नर फूल।
4: अब ये तो डॉक्टर साहब नहीं जान।
2: अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फल फल बन रहे हैं क्या? गिलकी बन रही है?
4: नहीं फल नहीं बन रहे, फूल लग मुड़ जाते हैं और वो झड़ जाते हैं।
2: अच्छा देखिए मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ पोषक तत्व की कमी हो सकती है, तो पोषक तत्व के लिए आप जैविक तो नहीं कर रहे हैं?
4: नहीं जैविक नहीं कर रहे।
2: हाँ तो उसमें आप 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए, है ना, 19-19-19 एक खाद आता है तरल वाला, उसको आप स्प्रे कर दीजिए, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए, और सब्जियों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले तत्व भी आते हैं जिसमें सभी तरह के तत्व होते हैं। इस तरह का कुछ उसमें खाद पानी न्यूट्रिशन डाल देंगे तो ये फल नहीं,

0: फल गिर रहा है या फूल से फल नहीं बन रहा है, तो उसमें पोषक तत्व की कमी है, ये आप कुछ नहीं माने।
1: एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नर फूल और मादा फूल। हाँ। अभी जैसे हमारे किसान भाई कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो जरा इसकी पहचान बता दीजिए।
0: देखिए वो देख के समझ में आ जाता है, नर फूल होगा जो वो खड़ा में ऐसे ऐसे में रहेगा और उसमें मतलब बड़ा रहेगा, उसमें फूल दिखेगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। और जो मादा फूल थोड़ा छोटा रहेगा और उसमें आप देखेंगे कि फल, जैसे ये फूल खत्म होगा तो उसमें ये गिलकी या उसमें फल बन जाएगा,
1: छोटा सा बनना दिखेगा। हाँ। वो उसमें है ना। हाँ। तो हमारे किसान भाई इस बात की जांच कर सकते। हाँ। हैं, तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते भैया,
2: संजू हरवार जी बोल रहे हैं, कर जिला सागर से।
1: जी संजू भैया बताएं क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है दीदी, गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी तो पड़न तो भैया बिल्कुल, अपनी खेती किसानी सोई अच्छी हो जाए। तो बताओ क्या प्रश्न है आज?
2: में जो है हमारे बिही के कुछ फल गिर रहे हैं और अनार के, तो किस कारण से गिर रहे हैं?
0: किसके काय के?
1: बिही और अनार के, अमरूद और अनार।
0: अच्छा अमरूद के। ये गर्मी वाला फल लिया क्या आपने?
2: नहीं गर्मी वाले नहीं लिए, अभी फल अभी फूल ही है।
0: अच्छा फूल है। देखिए अभी तो वैसे अब अगर ये आप ठंडी वाली बहार लेना, दो बहार आती है, एक तो अभी चल रही है और एक आती है ठंडी में, है ना? तो ये अभी अभी आप कितने सभी फल पे हैं कि कम है अभी?
2: सभी फलते हैं सर, सभी के फल झड़ रहे हैं।
0: नहीं उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ बीमारी टाइप की हो या?
1: अभी आप अभी तक आपने कितने उसमें से फल ले चुके हैं?
2: उनसे तो हम हर साल लीना को लेते हैं।
1: कितने साल पुराने हो गए आपके पेड़?
2: के नहीं लेते हैं।
0: कितने कितने साल पुराना पौधा आपका?
1: हेलो
0: हेलो,
2: गर्मियों के फल नहीं लेते हैं, जो ठंडी में और वर्षकाले में जो निकलते हैं उनके फल लेते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ। तो देखिए अभी अगर उसमें ज्यादा फल नहीं है तो उसकी अभी कटिंग कर दीजिए, है ना? ये उचित समय है, मई जून में, मई में कटिंग हो जाती है और ऊपर से उसमें कॉपर एक्सोक्लोराइड को
2: बहुत ज्यादा है।
0: हाँ
2: इसीलिए काट नहीं पा रहे
0: हैं। अच्छा फल है, तो फल है तो फिर उसमें मुझे जो लग रहा है कि इस टाइम में क्या है, अमरूद में फल कम आते हैं, है ना? या तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है इसके वजह से भी गिर सकते हैं। और उसमें एक दूसरा कारण है कि अगर मान लो आपके पोषक तत्व की कुछ कमी हो सकती है, इस वजह से भी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और फल रोक नहीं पा रहा है, तो इसके कारण से भी दो कारण से गिर सकते हैं, एक टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एक पोषक तत्व की कमी है। अगर ज्यादा फल है तो उसको अभी फल लगे रहने दीजिए, जितने ले सकते हैं उसमें ले लीजिए, कुछ एक आध आप पोषक तत्व डाल दीजिए उसमें, है ना? उसके बाद जब फल खत्म हो जाए तो उसकी कटिंग कर दीजिए जरूर, है ना? कई बार क्या होता है अपन कटिंग करते नहीं है, ये अभी जैसे फल खत्म हो जाए इसकी कटिंग कर दीजिए तो आपके बारिश में उसमें कोपले आ जाएंगी, और बारिश में पूरी कोपले आने के बाद नवंबर दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर से उसमें फल फूल लगने लगेंगे, तो वो फसल ठीक रहेगी आपके।
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक और किसान भाई से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: जी नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
3: जी, मैं जगत सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया, तहसील भीगवन, जिला रायसेन।
1: अच्छा जी रायसेन से बोल रहे, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी अभी मूंग में फूल आ रहा है, ऐसी कौन सी दवाई कि थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ये खट्टा फूल आ जाए?
1: अच्छा इकट्ठे फूल आ जाए, थोड़े थोड़े आ रहे हैं।
0: देखिए एक ह्यूमिक एसिड आती है ना, ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी आती है, बढ़ जाते हैं फल फूल, है ना? ये तो ये क्या बोलते हैं इसको, टॉनिक टाइप का बोलते हैं इसको अपन अपनी भाषा में, ये जाइम या कोई भी जाइम वाला चीज है ये, है ना? ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए तो उस फल फूल उसमें बढ़ जाएंगे, है ना? अगर फूल पे है, और एक 0534 का स्प्रे के साथ में भी कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड को, तो उससे आपके फल फूल अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है? फली अच्छी आएगी, दाने अच्छे बनेंगे।
1: बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार जो है वो अपनी बात हमसे कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अगर कुछ खेत अगर खाली हैं हमारे किसान भाइयों के, तो वो किस तरह से खरीफ की तैयारी कर सकते हैं?
0: देखिए अभी खेत खाली है तो ये समय सही उचित समय है कि इसका सॉयल का सैंपल ले लें या मिट्टी का परीक्षण के लिए उसका सैंपल ले लें, है ना? और 3 साल में कम से कम आप एक बार जरूर सॉयल का सैंपल लेके उसके भूमि का उसके पोषक तत्व की जांच जरूर कराएं। इससे क्या होता है कि आपके जमीन में क्या किस चीज पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की मात्रा ही आपको डालनी चाहिए, क्योंकि आपके जमीन में अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन कम डालना है, फास्फोरस ज्यादा है तो फास्फोरस कम डालना है, तो भूमि का आप तो सबसे पहले उसका वो करा लें, टेस्ट करा लें।

0: करा लें,
1: हाँ सॉइल टेस्टिंग करा लें उसकी। दूसरा अभी जैसे आपने अगर मान लो खेत खाली है, खेत छोड़ के रखा है या खरीफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार प्लाऊ 3 साल में एक बार जो अनुशंसा है 3 साल में एक बार प्लाऊ गहरी जुताई जरूर करा लें। उससे जो आपके जो कीड़े जो निरंतर चलते रहते हैं खेतों में या बीमारियां हैं जो ऐसी जो हर हर साल आपको बीमारी कीड़े आते हैं तो वो खत्म हो जाती है। प्लट इसको 3 साल में एक बार प्लाव अनुशंसित वैज्ञानिक तरीका है, उसमें आपको जरूर कराना है।
0: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या समसामयिक सलाह देते हैं कि इस गर्मी में कैसे अपनी फसलों को रखें? अच्छा
1: देखिए आप सबसे पहले तो जैसे मूंग है तो मूंग में आपकी अभी फली बन रही होगी, इस पर आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए, और स्वस्थ है तो उसमें कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, है ना। और सब्जियों का भी आप सब्जियों का जैसे अभी ये जितनी बेल वर्गीय फसलें हैं फल हैं और इसको आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए, और कोई समस्या आने के बाद ही उसमें दवा डालिए।
0: पहले से नहीं डालिए,
1: पहले आप जैविक तरीका अपनाइए, जैविक से कंट्रोल हो जाता है। अगर जैविक तरीके से उसका उपचार नहीं होता है तो हमें केमिकल पे जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों समय की सीमा का ध्यान रखना है, हेलो ग्राम सभा को हम यहीं देते हैं विराम। जिन किसान भाइयों ने हमें फोन किया उनको हृदय से धन्यवाद, और उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज का हेलो ग्राम सभा का विषय था ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ थे हमारे साथ में डॉक्टर अशोक वर्मा, और कार्यक्रम अधिकारी थे श्री चंद्रशेखर शर्मा, ड्यूटी ऑफिसर बबीता भंडारी, कंट्रोल रूम अधिकारी किशन गुप्ता और विजय कामले, उद्घोषक हमारे साथ थी सरिता सिंह, और मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। तो चलते चलते कल की कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको दे दें, कल सुबह कृषि चर्चा में 6:45 पर सुबह जरूर सुने उद्यान लगाने की तैयारी कैसे करें डॉक्टर विजय अग्रवाल से, और लोकरम फरमाइशी हमारे जो है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम जरूर सुने। तो अब हो रही चलबे की विरिया, दे रानी बहन को अनुमति, राम राम जय सीताराम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन,

0: और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि ये जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है, वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया, और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है, और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था, और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई। और साथ साथ विश्व में जो जो अभी आर्थिक स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है, ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों में बात की। और यही नहीं, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी, उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज स्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत में यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ 5 देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है, लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो इच्छाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो 5 देश हैं इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर जो हमारे एम्बेसडर है कुमार तोहिन की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए वहां करके एक बात कही कि WAH जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट थी इसमें काफी कुछ लिखा है उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहाँ पर उनका पूरी सारी कंपनी, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ पर। मुझे याद है जब मैं वहाँ स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर थे लिफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
3: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
2: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ स्ट्रेट में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं वो काफी आशाजनक है
1: जी। और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
2: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे हैं और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो
1: जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में, पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
2: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं है?
2: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
2: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके, और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
2: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है, या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमश्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
2: पीएमश्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, मैनीट है और एम्पिरी है,

0: एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार, बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं, ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया, जिसको अपने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। बच्चों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड, और जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को तो लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
2: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
4: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले जाएगा।
5: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस

0: बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे, और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी भोपाल की। ये आकाशवाणी
1: यह है आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 8:23 हुए हैं और अब आइए हम सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से है, आवाजें आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की। आशीष पंडित के बोल हैं, धुन बनाई है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी इस फिल्म का ये गाना था जो अभी आपने सुना आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज में। और अब सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में राजनीति फिल्म का गाना। समीर के बोल हैं, धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

तुम मिले, यह वो फिल्म जिसका गाना हम कार्यक्रम के अंत में सुनने वाले हैं। आवाज जावेद अली की है, कुमार और सईद कादरी के बोल हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या रिले करेंगे दिल्ली से बस कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।

0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कर्तव्य। इस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, वर्मा मलिक के बोल थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और सुनने के लिए हमारे इन सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा था। गांव डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरमीत सिंह, लवप्रीत सिंह, करमजीत कौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक और संदेश हमें इसी गीत के लिए मिला था, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। और एक ये संदेश भेजा दिल्ली से कन्हैया लाल रीता देवी ने, मोरी गेट दिल्ली से ये संदेश इन्होंने भेजा। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने संदेश भेजा था इसी गीत के लिए। और एक और संदेश हमें मिला था इसी गीत को सुनने के लिए, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिसके लिए हमें संदेश भेजा है, साईं की शिरडी से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे और मानसी मालोदे ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और संदेश भेजने वाले हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। पाकुड़ झारखंड से लिखते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से लिखते हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप सभी सुनना चाहते हैं सच्चा झूठा फिल्म का गाना, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है, इंदिवर के बोल हैं, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मुझसे बात करती हूँ।
1: और अब अगला गाना है फिल्म खिलौना से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: और ये गाना सुनने के लिए व्हाट्सएप संदेश भेजा था कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। श्रीरामपुर से श्री गणेश फैक्ट्री श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानु कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे और सईसा सोनवणे। एक ये संदेश में भेजा बुलडाड़ा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल। बड़सिंगी बुलडाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली ने। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से लिखते हैं गंगाधर ये में कर, प्रमोद ये में कर और प्रदीप ये में कर। एक और ये संदेश हमें मिला है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। और अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: और अब अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की जिन्होंने संदेश भेजा है। मैं गांव चोहलादा बागपत से संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम।

वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदर शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अमान अब्बासी। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। और ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर से परम लाल विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, पूना विश्वकर्मा, आरती विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, जागृति विश्वकर्मा, मानवी विश्वकर्मा, हर्षिता विश्वकर्मा और पूरा विश्वकर्मा परिवार। आप सभी की पसंद पर हम सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना, जो लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है रविंद्र जैन ने।

और अब आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की बारी है, जो पसंद है हमारे इन सभी श्रोताओं की। लिखते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से संदेश भेजते हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। संबलपुर कांकेर से संदेश भेजा है फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल बाबू, प्रियांश और भाव्या देवांगन। और गुमला झारखंड से संदेश भेजते हैं एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। तो आप सभी की पसंद पर आइए सुन लेते हैं आंखें फिल्म का ये गाना। आवाज लता मंगेशकर की, धुन रवि की, बोल साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर के गाए से गीत के साथ कार्यक्रम अनचाहे गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बा नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

0: चाहिए मुझे।
1: गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उधास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उधास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

0: से।
1: उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या

ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उदास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उदास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

0: अंदर हूँ।
1: अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

साया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

जाएगी, जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। और अंतराल के बाद जब हम आएंगे, आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

यूं भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता, दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।

के पल बीत जाते हैं जल्दी, कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे, तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं और रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे।